FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत आस्था के स्वर कार्यक्रम में।
1: आस्था के स्वर।

संत कबीर रचित ये भजन अभी आपने सुना पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है संत सूरदास रचित भजन, स्वर नितिन मुकेश का है।

0: संत सूरदास रचित इस भजन के साथ ही आस्था के स्वर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: आस्था के स्वर।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन, तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना?
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आलेख CB गांधी का है और निवेदक स्वर है रवि कुमार सोनी का।
3: जीव मात्र का उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। नाली के कीड़े से हाथी तक और रंक से राव तक सभी अपने अपने तरीके से सुख की चाहना करते हैं। पेड़ पौधों के समान स्थावर एवं पशु पक्षियों के समान जंगम जीव मानवोचित भाषा में अपने भाव प्रदर्शित नहीं कर सकते, अतएव उनकी भावनाओं का हम अनुमान ही लगा सकते हैं। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि सुख पाने की प्रवृत्ति उनमें भी होती है। विवेक वाणी युक्त होने के कारण मानव की विशेष स्थिति बनती है। देह धारण से लेकर देह त्याग तक मानव मात्र की प्रत्येक चेष्टा सुख का अनुभव करने के लिए होती है। भावनाओं को शब्दों के द्वारा प्रदर्शित करने की क्षमता के कारण वो अपनी अनुभूति को अन्यों के सम्मुख रख सकता है। पुत्रेषणा, चित्तेषणा, लोकेषणा के द्वारा मानव सुख प्राप्त के प्रयत्न करता है, परंतु अंततः होती है दुख प्राप्ति। उदाहरण के लिए हम विवाह प्रसंग को ही लें। दैहिक, पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक आदि सुख प्राप्ति के लिए मानव विवाह रचाता है। स्वामी बनकर वो जीवन में चतुर्दिक अनुकूलता प्राप्त करना चाहता है। परिवार के आश्रय के लिए निवास व्यवस्था करना, सुचारू परिवार संचालन के लिए समुचित सुविधाएं जुटाना, संतान प्राप्त होने पर उसके पालन पोषण की उचित व्यवस्था करना आदि अनेक कार्य करने के लिए उसे अपना समय और धन दोनों लगाना होता है। लेकिन आखिरी में क्या होता है? दुखानुभूति होने लगती है। संतान न होने पर अथवा उसकी पथ भ्रष्टता के कारण प्रतिकूलता की अनुभूति होने लगती है। कहा जाता है कि सुख प्राप्ति का उद्देश्य लेकर विवाह किया गया था, परंतु हो रही है दुखानुभूति। स्वार्थ प्रेरित अस्थायी सुख पर ध्यान केंद्रित होने के कारण स्थायी सुख का उसे विस्मरण हो जाता है, फलस्वरूप दुख प्राप्ति होती है। केवल कर्तव्य भावना से सभी कार्य किए जाएं तो इस स्थिति से बच सकते हैं। कर्तव्य का निर्वाह करने का संतोष प्राप्त हो सकता है। भौतिक सुख के लिए किया गया प्रत्येक प्रयत्न मनुष्य को परिणामी प्रतिकूलता का अनुभव कराता है, क्योंकि भौतिक सुख प्राप्ति देश, काल, वस्तु, परिस्थिति विशेष के कारण होती है। परिवर्तन नियम के अनुसार इनका वियोग होना ही है। संत कवि इस संदर्भ में कहते हैं, सदा न फूले तोरई, सदा न सावन होए, सदा न यौवन थिर रहे।

0: जाना जीवे कोई। सार्थक पंक्तियों से निष्कर्ष निकलता है कि भौतिक साधनों से प्राप्त सुख स्थायी नहीं रह सकता। वियोग अवश्यम भावी होने के कारण दुखानुभूति अटल है, परंतु इससे जीवन प्रभावित न हो इसके लिए विवेकपूर्ण प्रयत्न करना जरूरी है। विवेक सुझाता है कि संसारोन्मुखी होने के कारण मिलने वाली दुखानुभूति का प्रभाव निरंतर निरस्त करने के लिए परमेश्वरोन्मुखी होने के प्रयत्न अवश्य करने चाहिए, अर्थात ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। सुख बाहर ढूंढने की बजाय उसे भीतर ढूंढना चाहिए। इस प्रकार अस्थायी सुख को स्थायी सुख में परिवर्तित करने में सुविधा होगी। परिणामतः शाश्वत आनंद एवं संतोष की प्राप्ति होगी। कहा गया है, सुख माने तो सुख है, दुख माने तो दुख। सच्चा सुखिया वही है जो सुख माने ना दुख। ये पंक्तियां सिद्ध करती हैं कि सुख मान्यता पर निर्भर है, निरपेक्षता पर निर्भर है। अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों को भगवान का प्रसाद मानकर मानसिक विचलन से बचना चाहिए। इस संदर्भ में लोकोक्ति है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये मानने पर प्रत्येक परिस्थिति में सुख की अनुभूति की जा सकती है।
1: ये था आज का चिंतन।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: श्रोताओं, ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगुली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

अभी श्री रामचरितमानस गान प्रसारित किया गया। गायक स्वर रंजना जोगलेकर का और आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक श्री सतीश भाटिया।

0: सुहानी सुबह हो चुकी है और इस सुबह का आनंद लीजिए निमाड़ की सुरीली धड़कन के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
1: श्रोताओं, यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है गर्मी में कपास की खेती। वाचक स्वर माधुरी सेन का।
2: किसान भाई बहनोनी राम राम। हमारी आज की कृषि चर्चा को विषय छे गर्मी में कपास की उन्नत खेती। नवाचक स्वर छे माधुरी सेन को। भाई बहनोनी, कपास हमारा देश की सबसे महत्वपूर्ण फसल नमसी एक छे। कपास एक नगदी फसल छे क्योंकि ई प्राकृतिक रेशा का उत्पादन का लेन उगाई जाए। कपास की खेती को व्यापक उपयोग होना का कारण एक सफेद सोना की संज्ञा भी दी गई। मई का महीना में गर्मी का कपास की बुआई शुरू हुई जाए। कपास की खेती सिंचित और असिंचित दो प्रकार से की जा सकच। किसान भाइयों, कपास की खेती का लेना अनुकूल खेती की अगर हम बात करा तो एका बीज का अंकुरण का लेना 32 से 34 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता रहे। न पौध विकास का लेना 16 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता रहे। जहाँ तक एक ही खेती का लेंड मिट्टी की चुनाव की अगर हम बात करा तो एका लेंड पर्याप्त जल धारण उचित जल निकास वाली मिट्टी की जरूरत पड़च। कपास की खेती का लेना काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाए। पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होना पर कपास की खेती बलुई न दोमट मिट्टी में भी की जा सकच। मिट्टी को पीएच मान 5.5 से 6 का बीच होना चाहिए। अब बात करा खेत की तैयारी की तो किसान भाई बहनोनी एक ही खेती का लेना रबी फसल कटाई का बाद मिट्टी पलटना वाला हल सी जुताई करी ख पाटो लगाई ख भूमि का समतल कर लेनु चाहिए। खेत की अच्छी तरह से सफाई करी ख खरपतवार नष्ट करी देनु चाहिए। यहाँ इन्हीं बात को ध्यान रखा कि खेत समतल होना चाहिए। मिट्टी की जल धारण क्षमता न जल निकासी की क्षमता अच्छी होए। कपास की उन्नत किस्म की अगर हम बात करा तो कपास की खेती का लेना उन्नत किस्म न को चुनाव मिट्टी तापमान जलवायु सिंचाई समय अवधि और कपास का लेन खाद पर निर्भर छे। कपास की उन्नत किस्म ने की अगर हम बात

0: करा तो राशि 659, अजीत 155, आरएस 2818, आरएस 2013, एनएच 4611, कावेरी मनीमेकर न आदित्य मोक्ष प्रमुख छे। कपास की बीज दर प्रति एकड़ पौधा या फसल की दूरी पर निर्भर करज। फिर भी 2 पैकेट प्रति एकड़ या 900 ग्राम बीज प्रति एकड़ बिजाई की आवश्यकता होए। कपास बुआई की विधि, किसान भाई बहनों बीटी कपास की बीज ख 108 सेंटीमीटर कतार सी कतार की दूरी और 60 सेंटीमीटर पौधा सी पौधा की दूरी पर बुआई करनी चाहिए। अमेरिकन किस्म न की बुआई 60 सेंटीमीटर कतार सी कतार की दूरी न 45 सेंटीमीटर पौधा सी पौधा की दूरी पर बुआई करा। कपास की देसी किस्म में कतार सी कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध सी पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाई बहनों यदि कपास की खेती लवणीय भूमि में करी रहा हो तो मेड़ बनाई खाना मेड़ की ढाल पर बिछी बोनी करनी चाहिए। कपास की खेती का लेना खाद न उर्वरक प्रबंधन, उन्नत किस्म की कपास उपज का लेना नाइट्रोजन 80 से 120 किलोग्राम, फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम, पोटाश 20 से 30 किलोग्राम और सल्फर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ का हिसाब से देनु चाहिए। हाइब्रिड न बीटी किस्म का लेना नाइट्रोजन 150 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम, पोटेशियम 40 किलोग्राम, सल्फर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा देनु जरूरी छे। भाई बहनों सल्फर की पूरी मात्रा बुआई का समय 15%, नाइट्रोजन बुआई का समय न बचेल मात्रा 3 बराबर मात्रा में 30, 60, 90 दिन में देनु चाहिए। एका विपरीत फास्फोरस अरु पोटेशियम की आधी मात्रा रोपण का समय अरु दूसरी आधी मात्रा बुआई का 60 दिन बाद डालनु चाहिए। एक साथ है किसान भाई बहनों एक ही अच्छी उपज का लेना खेती की अंतिम जुताई का समय प्रति एकड़ 7 से 10 टन गोबर की खाद डालनु चाहिए। सिंचाई प्रबंधन की अगर हम बात करें तो कपास की फसल में बोनी का बाद खाद डालने का बाद अरु फूल आना का समय 5 से 6 बार सिंचाई जरूर करा। अंकुरण का 20 से 30 दिन सिंचाई करा। असो करना सी पौधा की जड़ गहरी हुई जाए फिर हर 20 से 25 दिन बाद सिंचाई को दोरो करनु चाहिए। एक अलावा किसान भाई बहनों कपास का अच्छा उत्पादन का लेना एक ही सही समय पर बुआई रोग अरु कीट नियंत्रण न खरपतवार प्रबंधन भी जरूरी छे। न आज की कृषि चर्चा में बस एतरोज राम राम।
1: आप सुन रहे थे कृषि चर्चा।

0: जब तक निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा ने सुनी लेती है, जब तक तमख चैनन नहीं मिलतो है, तो आप भी सुनी लो निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: श्रोता, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से, यह निमाड़ की सुरीली धड़कन। और श्रोताओं, सुबह के 6:50 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए हम आपको आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज के शेष कार्यक्रमों में अब से कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम में सुने वार्ता, व्यक्ति के जीवन में परिवार का महत्व। वार्ताकार होंगी शिवानी मौर्य। सुबह 7:20 पर होगा सुनहरे पल कार्यक्रम।
2: मेस्मराइजिंग मुस्कुराहट की मल्लिका माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर हम पेश कर रहे हैं
3: सुनहरे पल।
4: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
2: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं माधुरी दीक्षित पर फिल्माए एक से बढ़कर एक नगमे।

0: जी हाँ, आज का सुनहरे पल कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। सुबह 8:15 और शाम 5:30 हम प्रसारित करेंगे निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम। आपकी फरमाइश करेंगे पूरी और सुनवाएंगे आपकी ही पसंद के फिल्मी रंग में आपके मीति गीत कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर। सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। पर बहने सुने अपना पसंदीदा नारी जगत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में होगी भेंट वार्ता, पारिवारिक विघटन को कैसे बचाएं इस विषय पर रूबी जैन से बातचीत की है मीनू जैन ने। इसके अलावा होगी टिप्स फिल्मी नगमे और चर्चा होगी विश्व पारिवारिक दिवस पर। 6:00 युवावाणी कार्यक्रम में आज का आकर्षण होगा गीतों भरी कहानी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 6:30। 7:21 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सुने कृषि उपयोगी भेंट वार्ता, कृषि समाचार, मौसम की जानकारी, मंडी भाव और निमाड़ी लोक संगीत। रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम।
1: मेस्मराइजिंग मुस्कुराहट की मलिका माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर हम पेश कर रहे हैं
2: सुनहरे पल।
3: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
1: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं माधुरी दीक्षित पर फिल्माए एक से बढ़कर एक नगमे।

0: और बातें करेंगे माधुरी दीक्षित के बारे में कुछ खास।
1: सुबह 7:20 पर जरूर सुनिएगा
2: सुनहरे पल।
3: क्या बात है, सुबह की चाय और अखबार दोनों मिल जाए तो सुबह का आनंद दोगुना हो जाता है।
4: जी हुजूर, यदि चाय और अखबार के साथ हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो सुबह और भी सुहानी हो जाती है ना?
3: बिल्कुल सही कहा, तो सुनते रहिए
4: निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
5: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

आज की ताजा खबर में पेश है आज प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। कलेक्टर श्री गुप्ता ने स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक ली। स्वच्छता और नल संरक्षण के क्षेत्र में समाज सेवी संगठनों से किया सहयोग करने का निवेदन। कल गुरुवार को ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण 2026 का कार्यक्रम जारी। संबंधित दावे आपत्ति 15 से 25 मई तक निर्धारित मतदान केंद्रों पर लिए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय

महाविद्यालय खंडवा द्वारा कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत 15 मई के प्रारंभ होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सैन्य बल व अन्य बलों की तैयारी करवाई जाएगी। और अब एक नजर मौसम के हाल पर। खंडवा में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कल जहां दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये थी आज की ताजा खबरें। समाचारों का संकलन किया अपूर्वा दशोरी ने।

0: मेस्मराइजिंग मुस्कुराहट की मल्लिका माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर हम पेश कर रहे हैं
1: सुनहरे पल।
2: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं माधुरी दीक्षित पर फिल्माए एक से बढ़कर एक नगमे।

0: और बातें करेंगे माधुरी दीक्षित के बारे में कुछ खास।
1: सुबह 7:20 पर जरूर सुनिएगा
2: सुनहरे पल। ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
1: आकाशवाणी खंडवा।

0: एफएमए 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम में आज सुने वार्ता, व्यक्ति के जीवन में परिवार का महत्व। वार्ताकार हैं शिवानी मौर्य।
1: आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है, हर दिल के बेहद करीब है और जिसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी सी लगती है। तो विषय है व्यक्ति के जीवन में परिवार का महत्व। दोस्तों, जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है तब वह सबसे पहले जिस संसार को पहचानता है वह उसका परिवार होता है। माँ की ममता, पिता का संरक्षण, दादा दादी का स्नेह, भाई बहनों की नोकझोंक, यही तो जीवन की पहली पाठशाला है। आज के आधुनिक दौर में इंसान तकनीक से तो बहुत जुड़ गया है लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों से दूर होता जा रहा है। मोबाइल की स्क्रीन बड़ी हो गई है लेकिन परिवार के साथ बैठने का समय छोटा पड़ गया है। ऐसे समय में परिवार के महत्व को समझना और भी ज़रूरी हो जाता है। परिवार क्या है? परिवार केवल 4 लोगों का एक साथ रहना नहीं है। परिवार एक भावनात्मक बंधन है जहाँ प्रेम होता है, अपनापन होता है, विश्वास होता है और सुरक्षा का एहसास होता है। जब हम थक कर घर लौटते हैं और कोई पूछ ले आज दिन कैसा था, तो यही एक सवाल सारी थकान कम कर देता है। यही परिवार की ताकत है। परिवार वह जगह है जहाँ बिना किसी दिखावे के हमें स्वीकार किया जाता है, जहाँ हमारी कमियाँ भी अपनाई जाती है और हमारी सफलताओं पर सबसे ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती है। परिवार जीवन की पहली पाठशाला होता है। कहा जाता है कि बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है। बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है, संस्कार सीखता है और सबसे ज़रूरी इंसानियत सीखता है। माँ उसे प्रेम सिखाती है, पिता जिम्मेदारी सिखाते हैं, दादा दादी अनुभव सिखाते हैं और भाई बहन साझेदारी सिखाते हैं। यदि परिवार मजबूत संस्कार देता है तो व्यक्ति जीवन में सही रास्ता चुनता है। यही कारण है कि समाज की नींव भी परिवार पर ही टिकी होती है। कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा

सहारा परिवार ही होता है। साथियों, जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी खुशी आती है तो कभी कठिनाइयाँ भी सामने खड़ी हो जाती हैं। ऐसे समय में यदि कोई बिना शर्त साथ खड़ा रहता है तो वह परिवार होता है। जब व्यक्ति असफल होता है, निराश होता है, टूट जाता है, तब परिवार उसे संभालता है। एक माँ का हाथ सिर पर हो, पिता का विश्वास साथ हो, तो व्यक्ति फिर से खड़ा होने की ताकत पा लेता है। आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में तनाव, अकेलापन और मानसिक दबाव तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय में परिवार भावनात्मक

एक माँ का हाथ सिर पर हो, पिता का विश्वास साथ हो, तो व्यक्ति फिर से खड़ा होने की ताकत पा लेता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, अकेलापन और मानसिक दबाव तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय में परिवार भावनात्मक सुरक्षा देता है। परिवार के साथ कुछ पल बैठकर हंस लेना, बातें कर लेना, साथ खाना खा लेना और छोटी छोटी बातें मानसिक शांति देती है। एक खुशहाल परिवार व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उसे यह भरोसा देता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, वह अकेला नहीं है। साथियों, परिवार केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत, सबसे सुरक्षित छांव और सबसे सच्चा सहारा होता है। मनुष्य चाहे कितना भी सफल क्यों न हो जाए, उसके जीवन की असली खुशियां परिवार से ही जुड़ी होती है। देखें व्यक्ति के जीवन में परिवार का क्या महत्व होता है। किसी भी व्यक्ति की पहली सीख परिवार से शुरू होती है। बोलना, चलना, संस्कार, व्यवहार, सम्मान, प्रेम, सहयोग, ये सभी गुण परिवार ही सिखाता है। माता पिता और बुजुर्गों के अनुभव जीवन की राह आसान बनाते हैं। परिवार सुख दुख का सच्चा साथी होता है। जीवन में जब कठिन समय आता है तब सबसे पहले परिवार ही साथ खड़ा दिखाई देता है। एक अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा परिवार में ही मिलती है। संस्कार और मूल्यों की नींव अर्थात ईमानदारी, अनुशासन, करुणा, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण परिवार से ही विकसित होते हैं। अच्छा परिवार व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाता है। तो जब व्यक्ति जानता है कि उसके पीछे उसका परिवार खड़ा है तो उसका आत्मविश्वास कहीं अधिक बढ़ जाता है।

0: परिवार मानसिक तनाव को कम करता है और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। परिवार के साथ बिताया गया समय व्यक्ति को सुकून और खुशी देता है। परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण परिवार में ही होता है। त्यौहार, रीति रिवाज, पारिवारिक परंपराएं और हमारी संस्कृति, इन सब का ज्ञान परिवार से ही मिलता है। परिवार हमारी पहचान को बनाए रखता है। आज के समय में परिवार की महत ही आवश्यकता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग व्यस्त होते जा रहे हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को करीब लाकर भी कहीं ना कहीं दूर कर दिया है। ऐसे समय में परिवार के साथ समय बिताना, बातचीत करना और रिश्तों को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। परिवार जीवन का आधार है। जिस व्यक्ति के पास परिवार का प्यार और साथ होता है, वह जीवन की हर कठिनाई का सामना आसानी से कर सकता है। परिवार वह जगह है जहाँ जीवन शुरू होता है और प्रेम कभी खत्म नहीं होता। आज संयुक्त परिवारों की जगह छोटे परिवारों ने ले ली है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बुजुर्ग परिवार की जड़ होते हैं। उनके अनुभव जीवन की दिशा बदल सकते हैं। उनकी बातें कभी कभी पुरानी जरूर लगती हैं, लेकिन उनमें जीवन का सार छिपा होता है। दादा दादी और नाना नानी बच्चों को कहानियों के माध्यम से संस्कार देते हैं। वे परिवार को भावनात्मक रूप से जोड़ कर रखते हैं। परिवार और बच्चों का भविष्य, इसमें भी गहरा नाता है। बच्चों का व्यक्तित्व काफ़ी हद तक परिवार के वातावरण पर निर्भर करता है। यदि घर में प्रेम, सम्मान और सकारात्मक माहौल हो तो बच्चे आत्मविश्वासी और संवेदनशील बनते हैं। लेकिन यदि परिवार में लगातार तनाव, झगड़े, दूरी हो तो उसका प्रभाव बच्चों के मन पर भी पड़ता है। इसीलिए परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक स्वस्थ वातावरण देने की जिम्मेदारी भी है। लोग अपने कैरियर और व्यस्तताओं में इतने उलझ गए हैं कि परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता जा रहा है। कई घरों में लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन बातचीत बहुत कम होती है। हर किसी के हाथ में मोबाइल, लेकिन दिलों में दूरी बढ़ रही है। हमें यह समझना होगा कि रिश्तों को समय देना ज़रूरी है। परिवार केवल आर्थिक ज़रूरतों से नहीं चलता, उसे प्रेम, संवाद और अपनापन भी चाहिए। परिवार को मजबूत बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे साथ समय बिताएं, दिन में कुछ समय परिवार के साथ ज़रूर बिताएं। एक साथ बैठकर भोजन करना भी रिश्तों को मजबूत करता है। संवाद बनाए रखिए, अपनों से खुलकर बात करें। मन की बातें साझा करने से गलतफहमियां कम होती है। सम्मान दें, परिवार में हर सदस्य का सम्मान ज़रूरी है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। बुजुर्गों का आदर करें, उनका अनुभव परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होता है। छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें। त्यौहार, जन्मदिन, पारिवारिक मिलन, ये पल रिश्तों में मिठास घोलते हैं। भारतीय संस्कृति में परिवार को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, यानी पूरा संसार एक परिवार है। संयुक्त परिवार की परंपरा ने हमें सहयोग, त्याग और सामूहिकता का महत्व सिखाया है। यही कारण है कि भारतीय परिवार दुनिया में अपनी मजबूत भावनात्मक जड़ों के लिए पहचाने जाते हैं। एक छोटी सी सीख और है दोस्तों, जीवन में पैसा कमाना ज़रूरी है, सफलता पाना भी ज़रूरी है, लेकिन इन सब के बीच यदि परिवार छूट जाए तो जीवन अधूरा रह जाता है, क्योंकि अंत में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनों की होती है। किसी अपने के साथ बैठकर दो पल हंस लेना, मन की बात कह देना, यही असली सुख है। घर बड़ा होने से नहीं, रिश्तों में प्रेम होने से परिवार खुशहाल बनता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, परिवार जीवन का वह अनमोल उपहार है जिसे संभाल कर रखना चाहिए। रिश्तों को समय दीजिए, अपनों को महत्व दीजिए, क्योंकि यही रिश्ते जीवन की असली दौलत है। परिवार वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में हमें टूटने नहीं देती। जहाँ प्रेम होता है, अपनापन होता है, वही सच्चा परिवार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
1: विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता, व्यक्ति के जीवन में परिवार का महत्व, वार्ताकार शिवानी मौर्य। FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर सिंहस्थ कृषि सिंचाई और यूसीसी जैसे मुद्दों पर किया मंथन। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे के घायलों से मुख्यमंत्री ने जाना हाल। मामले में आरोपी संचालक गिरफ्तार, फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त। और मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में आज तीव्र लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यात्रा से पहले मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष यूएई भारत के कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने भारत की लगभग 11% आवश्यकता को पूरा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस के साथ लगभग 45 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ ही कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों, आधारभूत संरचना, धार्मिक पर्यटन, कृषि, सिंचाई, शहरी विकास और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की इन बैठकों को मध्य प्रदेश के विकास एजेंडे और आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने श्री शाह से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में नक्सल उन्मूलन अभियान की जानकारी दी।
1: हमारे राज्य के अंदर के नक्सल जिले जो एक तरह से देश के अंदर मध्यप्रदेश का मंडला, बालाघाट, डिंडोरी का इलाका जो एक राज्य के नाते से नक्सल मुक्त हुआ, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में, माननीय गृहमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उन्होंने हमारे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के नए कानूनों को लागू करने की जिस तरह से मैकेनिज्म पे मध्यप्रदेश सरकार काम कर रही है, उससे हमने संतोष व्यक्त किया।
0: वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों के हित में केंद्र सरकार से गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है।
1: प्रहलाद जोशी जी से मुलाकात हुई। हमारे लिए राज्य में गेहूं खरीदी को लेकर के देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं की परचेसिंग अगर कहीं हुई है तो मध्यप्रदेश में हुई। 16 लाख मीट्रिक टन का हमारा टारगेट है। आज तक 75 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हम गेहूं जमा कर चुके हैं। ऐसे में 100 लाख से भी ऊपर जाने के कारण से हमने प्रहलाद जोशी जी से निवेदन किया कि वो हमारा टारगेट बढ़ाए ताकि हम और अधिक किसानों से गेहूं खरीद सके।
0: दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने एक सकारात्मक पहल करते हुए मेट्रो से सफर कर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में कमी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी मेट्रो बहुत उपयोगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसों में घायल नागरिकों से भेंट कर उनके उपचार की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक इस हादसे में 4 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। हादसे में 27 लोग घायल हुए थे, जिन्हें देवास और इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। देवास जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी पवन पाटीदार ने घायलों को लेकर जानकारी दी।
2: हमारे पास सुबह 3:30 बजे खबर आई थी कि कला के पास में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है। पास में जो स्थिति थी उसमें कम से कम हमारे पास 28 लोग आए थे, जिसमें से हमने 13 लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया इंदौर के लिए, कि 12 लोग हमारे पास स्थिति नॉर्मल थी तो हमने एडमिट कर लिया। मतलब उनकी एक संख्या बढ़ी थी 4 बजे।
0: इस बीच पटाखा फैक्ट्री विस्फोट और आगजनी मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। फैक्ट्री मालिक अनिल मालवी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा

0: अधिनियम रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इधर संभागायुक्त आशीष सिंह ने टोक कला में संचालित आतिशबाजी विनिर्माण एवं विक्रय फैक्ट्री में हुई घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, CBSE के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर आज शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का शुभारंभ करेंगी। भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसुमरिया और स्थानीय विधायक भगवान दास सबनानी उपस्थित रहेंगे। भोपाल, रायसेन और नर्मदापुरम जिलों के प्रतिभागी छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। यह योजना प्रदेश के 20 चयनित जिलों में संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य OBC वर्ग के प्रतिभावान युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य अर्धसैनिक बलों की भर्ती परीक्षाओं के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। योजना में प्रदेश भर से चयनित 4,000 प्रतिभागियों को जिला स्तर पर 45 दिनों का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। IPL में मुंबई इंडियंस ने कल धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 8 विकेट पर 200 रन बनाए, जिसके जवाब में 201 रन का लक्ष्य मुंबई ने 6 विकेट और एक गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। राजनीति में शक्ति प्रदर्शन और VIP संस्कृति पर बड़ा प्रहार करते हुए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की है। उज्जैन से भोपाल लगभग 200 गाड़ियों के काफिले के साथ पदभार ग्रहण करने पहुंचे ठाकुर को मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही मामले के निराकरण तक उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश हीट वेव यानी लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में 15, 16 और 17 मई को तीव्र लू की चेतावनी जारी की है। वहीं नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा और झाबुआ में भी तीव्र लू चलेगी। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, सागर और रीवा संभाग के जिलों में 18 मई तक लू चलने की संभावना है। इसके पहले कल शाजापुर और छतरपुर के नौगांव में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों शहर प्रदेश के सबसे गर्म शहर रहे। वहीं 9 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के शासकीय नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत आज से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। आगरमालवा के सुसनेर ITI में युवा संगम के तहत आज रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के सांदीपनी विद्यालय प्रांगण अमरपुर में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सामूहिक विवाह समारोह में 166 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। मंडला के रामनगर में आज से 2 दिवसीय आदि उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम शामिल होंगे। गुना में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बरसाती नदी एवं सिद्ध की झिरिया क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया गया और कलेक्टर शाजापुर ने आगामी त्योहारों के चलते प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर सिंहस्थ, कृषि, सिंचाई और UCC जैसे मुद्दों पर किया मंथन। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे के घायलों से मुख्यमंत्री ने जाना हाल। मामले में आरोपी संचालक गिरफ्तार, फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त। और मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में आज तीव्र लू चलने की चेतावनी जारी की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है सुनहरे पल कार्यक्रम।

0: सुनहरे पल कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, अजिल फार्म के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
2: जब भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत मुस्कान, शानदार नृत्य और दमदार अभिनय की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है माधुरी दीक्षित का।

साथ ही साथ विद्या जी उनकी खूबसूरत मुस्कान के अलावा उनकी दो बोलती आंखें चेहरे पर बड़ी ही सुंदर दिखाई देती हैं।

0: तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं माधुरी दीक्षित पर फिल्माए एक से बढ़कर एक नगमे,
1: और बातें करेंगे माधुरी दीक्षित के बारे में कुछ खास।

0: 15 मई 1967 मुंबई का एक मराठी परिवार और वहीं जन्म हुआ एक ऐसी बच्ची का जिसने आगे चलकर हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। श्रोताओं, शायद इस बात को भी आप जानते ही होंगे कि 3 साल की छोटी उम्र से ही माधुरी जी ने कथक सीखना शुरू कर दिया था।
1: बचपन से ही माधुरी को डांस का बहुत शौक था। उन्होंने कथक की ट्रेनिंग ली और मंच पर प्रस्तुति देना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती।

0: उसके साथ ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, कॉलेज भी किया और वे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि माधुरी दीक्षित फिल्मों में आने से पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई भी की थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए बॉलीवुड का सबसे चमकदार मंच तैयार करके रखा था।
0: बिल्कुल, उनकी किस्मत यूं कहें माइक्रोस्कोप के लेंस में नहीं बल्कि कैमरे के लेंस में छुपी थी।

0: श्रोताओं जानते हैं, आज जिन्हें सुपरस्टार कहा जाता है ना, उनकी शुरुआती कई फिल्में सफल नहीं हुई। उनकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें वो मुकाम दिलाया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं।
1: बिल्कुल, फिल्मों का सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था। उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की वर्ष 1984 में आई फिल्म अबोध से, जो कि राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी थी। ये फिल्म ज्यादा चली नहीं, लेकिन माधुरी की मुस्कान ने लोगों के दिलों में जरूर जगह बना ली थी। 1987 में भी दो फिल्में आई, हिफाजत और उत्तर दक्षिण। 1988 में चार फिल्में बैक टू बैक आई, खतरों के खिलाड़ी, मोहरे, दयावान और तेजाब।

0: कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नते बार बार?
1: कैसे?
0: ऐसे।
2: एक दो तीन गाना जैसे ही रिलीज हुआ पूरे देश में तहलका मच गया। बच्चे बड़े, स्कूल कॉलेज शादी त्योहार, हर जगह बस यही गाना बजता था। इस गाने ने माधुरी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया।

0: इसके बाद वर्ष 1989 में जैकी श्रॉफ के साथ इनकी एक फिल्म आई वर्दी, और इस साल वापस एक बार अनिल कपूर के साथ इनकी फिल्म रिलीज हुई राम लखन।
1: राम लखन फिल्म की भोली भाली खूबसूरत सी राधा और उन पर फिल्माए गए कई नगमे, लेकिन सबसे ज्यादा जो गीत हमने सुना और सराहा और पसंद किया

और कृति, यदि 90 के दशक की हम बात करें तो बेहद पसंद की जाने वाली फिल्म आई दिल, उसके सारे ही गीत बेहद लाजवाब थे, फिल्म की स्टोरी और उस फिल्म में इन्होंने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। इनका साथ दिया आमिर खान ने और दिल फिल्म में उनकी अदाकारी के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और ये उनकी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड था।

0: और एक सुपरहिट फिल्म का हम अगर कार्यक्रम में जिक्र न करें तो माधुरी जी के साथ ये नाइंसाफी होगी। आप मेरा इशारा समझ ही रही होंगी विद्या जी।
1: धक धक करने लगा। ये गीत उस समय फिल्माया गया और इतना सुपरहिट हुआ बेटा फिल्म में कि उन्हें लोग धक धक गर्ल कहने लगे। आज भी ये नाम सुनते ही माधुरी की वही दिलकश मुस्कान और शानदार डांस आंखों के सामने आ जाता है।
0: बिल्कुल। और इस फिल्म में सरस्वती का उनका किरदार भी बहुत ही

0: धक धक करने लगा। ये गीत उस समय फिल्माया गया और इतना सुपरहिट हुआ बेटा फिल्म में कि उन्हें लोग धक धक गर्ल कहने लगे। आज भी ये नाम सुनते ही माधुरी की वही दिलकश मुस्कान और शानदार डांस आंखों के सामने आ जाता है।
1: बिल्कुल। और इस फिल्म में सरस्वती का उनका किरदार भी बहुत ही दमदार किरदार था। और इस किरदार के लिए उन्हें फिर एक बार मिला बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड, और ये उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड था।

कई फिल्म निर्देशक ये भी कहते हैं माधुरी जी के बारे में कि कैमरा माधुरी की मुस्कान से प्यार करता है। उनकी स्माइल इतनी नेचुरल और आकर्षक है कि दर्शक स्क्रीन से नजर ही नहीं हटा पाते। उनकी मुस्कान आज भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत मुस्कानों में गिनी जाती है।

और 90 के दशक की बॉक्स ऑफिस क्वीन के नाम से भी माधुरी जी को जाना जाता था। मतलब फिल्में थिएटर से निकल जाती थी लेकिन इन फिल्मों के गाने जो है चारों तरफ बजते रहते थे।

और माधुरी जी जो है उस दौर की खूबसूरत, स्टाइलिश, अकलमंद, आजाद ख्यालात होने के साथ साथ उन्होंने जो है एक आधुनिक नारी की जो छवि है वो उन्होंने कहीं ना कहीं पर्दे पर साकार की।

0: उनके एक्सप्रेशन और डांस के मूव्स इतने शानदार होते हैं कीर्ति, कि उनके साथ डांस करना कई कलाकारों के लिए चुनौती बन जाता था।
1: बिल्कुल, और जैसे कि आपने चुनौती की बात की, तो हम कैसे ना यहाँ पर जिक्र करें पुकार फिल्म के गीत का के सरासरा, जिसमें उनके साथ नजर आए एक जबरदस्त डांसर प्रभु देवा।

0: हम ये नहीं कह सकते हैं कि वे सिर्फ खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं और बहुत अच्छी उनकी स्माइल है, वे एक बहुत ही उम्दा अदाकारा भी रही हैं। अभिनय का भी उन्होंने लोहा मनवाया है। तो ऐसे ही कुछ किरदारों का हम जिक्र करना चाहेंगे। हम कैसे भूल जाएं खलनायक की, उनकी दमदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका गंगा को।
1: वही अंजाम फिल्म की शिवानी चोपड़ा को भी हम नहीं भूल सकते।
0: बिल्कुल,
1: मृत्युदंड की केतकी।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरे मुंह के शब्द छीन लिए हैं। ये तीनों ही किरदार बेहद दमदार किरदार माधुरी जी ने निभाए।

0: और उसके बाद आया उनका एक चॉकलेटी किरदार जो उस समय की युवतियों को या आज की युवतियों को भी कहें तो बड़ा ही भा गया और अपने आप में वे माधुरी दीक्षित को देखने लगी। फिल्म थी राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी।
1: बिल्कुल, हम आपके हैं कौन। 1994 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म के लिए माधुरी जी को मिला था 3rd फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: उनकी ड्रेस, हेयर स्टाइल, हंसी और अंदाज लड़कियों के बीच फैशन ट्रेंड बन गए थे।
1: बिल्कुल, आपने हेयर स्टाइल की बात की है तो मुझे याद आ रहा है कि स्टेप कट जो है वो माधुरी दीक्षित से ही ट्रेंडिंग हुआ था।

श्रोताओं, माधुरी दीक्षित को डांसिंग क्वीन बनाने का श्रेय जाता है उनकी डांस गुरु सरोज खान को, क्योंकि डांसिंग नंबर्स की अधिकांश कोरियोग्राफी जो कि सरोज खान ने ही की है।

0: और कीर्ति, जानती हो 90 के दशक में माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल थी। कई बार तो उन्हें फिल्म के हीरो से भी ज्यादा फीस दी जाती थी।
1: बिल्कुल। और अब मुझे उनकी एक ट्रायंगल फिल्म याद आ रही है जो 1997 में रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म में शाहरुख खान और करिश्मा कपूर उनके साथ थे। यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म को निर्देशित किया था।
0: दिल तो पागल है।

0: तो इस गीत की तरह ही माधुरी जी को इंतजार था अपने हम सफर का, और उनका ये इंतजार पूरा हुआ अक्टूबर 1999 में,
1: जब माधुरी ने डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से शादी की खबर दी तो लाखों फैंस हैरान रह गए।
0: अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन श्रीराम माधव नेने ने इस लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली माधुरी का दिल जीत लिया था।
1: हाँ, कई लोगों ने तो ये भी कहा कि हमारा पहला क्रश शादी कर चुका है।

0: शादी के बाद भी उनकी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई जिनका जिक्र हम यहाँ करना चाहेंगे।
1: कहा जाता है कि एक समय पेंटर मकबूल फिदा हुसैन माधुरी दीक्षित के इतने बड़े प्रशंसक बन गए थे कि उन्होंने उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन कई बार देखी और वे उन्हें प्रेरणा मानते थे, तो उन्होंने भी एक फिल्म बना दी गजगामिनी।
0: बिल्कुल, 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। 2001 में एक और फिल्म माधुरी जी लेकर आईं, लच्छा।
1: इसमें कई सारी अभिनेत्रियां थी, उनके अलग अलग किरदार थे, लेकिन माधुरी दीक्षित का किरदार एक अलग ही पहचान लिए हुए था।
0: जानकी के रोल में वे इस फिल्म में नजर आईं।

0: शादी के बाद भी उनकी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई जिनका जिक्र हम यहाँ करना चाहेंगे।
1: कहा जाता है कि एक समय पेंटर मकबूल फिदा हुसैन माधुरी दीक्षित के इतने बड़े प्रशंसक बन गए थे कि उन्होंने उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन कई बार देखी और वे उन्हें प्रेरणा मानते थे, तो उन्होंने भी एक फिल्म बना दी गजगामिनी।
0: बिल्कुल, 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। 2001 में एक और फिल्म माधुरी जी लेकर आईं, लच्छा।
1: इसमें कई सारी अभिनेत्रियां थी, उनके अलग अलग किरदार थे, लेकिन माधुरी दीक्षित का किरदार एक अलग ही पहचान लिए हुए था।
0: जानकी के रोल में वे इस फिल्म में नजर आई।
2: बड़ी

0: और अब जिक्र उस फिल्म का जिसमें माधुरी जी सपोर्टिंग रोल में थी,
1: और सपोर्टिंग रोल भी इतना दमदार कि हम उसके मुख्य नायक नायिकाओं को सहनायिका के बिना स्वीकार नहीं कर पाते।
0: और ये फिल्म थी फिल्म देवदास। इस फिल्म में उन्होंने खूबसूरत रखासा चंद्रमुखी का किरदार निभाया था।
1: और कीर्ति, इस फिल्म में उन्होंने अपनी आवाज भी दी थी एक गीत को।
0: बिल्कुल।
2: ददकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच, आहट सुन आहट सुन आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

0: और इस फिल्म के लिए उन्हें मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड।
1: देवदास के बाद कीर्ति, ऐसा लगा कि अब माधुरी जी अपनी पारिवारिक जिंदगी में व्यस्त हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा इंतजार खत्म हुआ और फिर एक बार माधुरी दीक्षित नजर आई रजत पट पर आजा नचले फिल्म में।

0: इस फिल्म के बाद फिर वे कुछ समय के लिए अमेरिका चली गईं और अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गईं। लेकिन 2012 में फिर एक बार माधुरी जी ने भारत में वापसी की और 2014 में उनकी फिल्म आई
1: डेढ़ इश्किया।
0: इस फिल्म में उनके साथ थे नसरुद्दीन शाह और अरशद वारसी। इसी वर्ष जूही चावला के साथ उन्होंने एक फिल्म की गुलाब गैंग,
1: और ये भी बड़ी ही चर्चित फिल्म रही है। इसमें इनकी अदाकारी को बड़ा ही सराहा गया।
0: विमेन एक्टिविस्ट के रूप में उन्होंने इस फिल्म में काम किया है। और विद्या जी, आप जानती हैं कि मतलब माधुरी जी वैसे तो एक मराठी परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे पहली मराठी फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय किया है वो वर्ष 2018 की फिल्म है बकेट लिस्ट। फिर 2019 में उनकी दो फिल्में आई टोटल धमाल, जिसमें उनका छोटा सा रोल था, अनिल कपूर उनके साथ थे, और एक और फिल्म आई कलंक।

0: और इसके बाद माधुरी जी की कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी खोल ली है और उस कंपनी के प्रोजेक्ट्स में वो व्यस्त रहती हैं।
1: और अभी भी छोटे पर्दे पर वो सक्रिय हैं और रियलिटी डांस शो में वो जजेस की भूमिका में देखी जाती है।

0: और वेब सीरीज का जमाना चल रहा है तो उसमें भी माधुरी जी पीछे नहीं है। पिछले साल वर्ष 2025 में ही उनकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी मिसेस देशपांडे के नाम से, बड़ी ही चर्चित वेब सीरीज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखने में, जिसमें उन्होंने एक सीरियल किलर का किरदार जो है वो निभाया है और पुलिस की मदद करती है एक दूसरे सीरियल किलर को ढूंढने में।
1: यानी एक्टिंग का जो उनका जुनून है वो अभी भी जारी है।
0: बिल्कुल।

0: इस कार्यक्रम के माध्यम से आज माधुरी जी के जन्मदिन पर उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं और उन्हें देते हैं जन्मदिन की ढेरों बधाइयां।
1: वैसे तो माधुरी दीक्षित का किरदार, उनकी अदाकारी, उनकी फिल्में इतनी सारी है कि हम एक छोटे से समय में उनको बांध नहीं सकते। किसी और दिन फिर मौका मिला फिर बातें करेंगे उनकी मुस्कान की, उनकी फिल्मों की। अभी विदा लेते हैं, मैं विद्या सिंह
0: और मैं कीर्ति गोखले।
1: नमस्कार।

0: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं। समाचार प्रभात बस कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने

0: के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपये और डीजल 93.14 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपये और डीजल 95.13 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपये और डीजल का मूल्य 95.35 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए।

0: आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम,

0: हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए नत्थूजी पटेल और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत।
3: दयानंद स्वामी की जय। श्री गणराज को सुमरण।

0: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
0: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं?
0: आकाशवाणी खंडवा पर।
2: निमाड़ी लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं नत्थूजी पटेल और साथियों के गाए लोक भजन, और ये है कृष्ण भक्ति गीत।

0: निमाड़ी लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नथुजी पटेल और साथियों के गाए लोक भजन। निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: ध्वनि तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
2: आप हमारी जान बन गए।
1: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्म नगमे, कार्यक्रम है आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आपके मीति गीत कार्यक्रम में स्वागत है हमारे सभी सुधी श्रोता साथियों का। और इस कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ विद्या सिंह, तो आप सभी को हमारा नमस्कार। और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपके ईमेल से। पढ़ लेते हैं पहले ईमेल और फिर सुनवाएंगे आपकी पसंद का बेहतरीन सा नगमा। तो ये ईमेल हमें मिला है पालदा नाका से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी बबलू और रफ़ी मंसूरी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमनाज अंसारी और बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से है डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा, चन्नगर कॉलोनी

से कौशल्या जोशी, प्रमिला, सुनील, अम्बाला से आशा डोमिन और सुरेश, बिहार स्टेट डुमराव से ही है अस्मा अंसारी, आमना परवीन, लड्डू अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य, गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, मास्टर कबीर और राधिका पूजा, राठौर मोहल्ला जामली कला से मानकचंद राठौर, पुष्पा बाई ग्राम छिगांव देवी जिला खंडवा से अशोक वाघे, वंदना वाघे, कांता वाघे, नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी, पूनम शर्मा और बिहार से है शेख जफर हसन, नरगिस जफर, कहारवाड़ी मोहल्ला ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, सनावत से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा और राजकुमार बुडाना, सुदानमा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जत्ताप हैं ये, और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमीन, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, कौशल गोस्वामी, बेबी जोई और रिक्की गोस्वामी, नागपुर महाराष्ट्र से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया, अनिल कौचाले, सबिया सुषमा ये लिखते हैं इंदौर से, छोटी बलिया फिल्म नगरी मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, दुखना रानी, आरजू, जूही इकबाल और इनके परिवार के सभी सदस्य, इमरान अहमद फूलमाले, कापस हेड़ा नई दिल्ली से लिखते हैं और इनके साथ हैं आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले, लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद, राइन अखलाक और फूल वाले परिवार का पूरा सदस्य, पाकुड़ झारखंड से है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, तासु आर्यन, आनंद सत्यम, तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिशीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, अनारकली बाजार जगराव से है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका, गव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, चंदुलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश सिंगरोल, नेहा और वान्या ये हैं पथरिया भरेवा से। तो सुन लेते हैं ये वाला गीत और फिर हम आपको बताएंगे कि हमने किस फिल्म से लिया है।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको सुनवाया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत, गाया उदित नारायण ने और संगीत दिया आनंद मिलिंद ने, शब्द आनंद बख्शी के।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपके मिति गीत कार्यक्रम में पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं तनुवेट्स मनु फिल्म का ये गीत। पहले बता दें कि पसंद किसने किया है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। राजकमल रेडियो लिसनर्स संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस नमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण और चंपा साहू। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघु कुमार और भानुप्रिया। टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, रोजस्वी यादव। ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कृष्टि पटवा। ग्राम हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी।

मनीष रामदेवरा से, दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल ये डांगरी से है, और खुदा बख्श खलीफा ग्राम शाहूनगर यवतमाल से है, राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और प्रियांशी टेगोर कॉलोनी साई मंदिर के पास खंडवा से, सुदामा महेश्वरी, सीता आशीष महेश्वरी, अमन महेश्वरी, विजय महाराज, माणकचंद गुप्ता और इनके साथी अनिल, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा, हनुमान, अम्बेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज और जमदाड़े परिवार के सभी सदस्य, नारगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, डिंपल, ट्विंकल, निशा, तुलसी और दिशा, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी और प्रियांक थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर पीएम थांदी और बेबी वामिका और वाणी थांदी, ग्राम जाखो से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमलजीत, योगेश कुमार, दीपक और कुमारी पूजा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाहना हसन, नाजिया और इब्राहिम, शासीनगर बीड़ शहर से है किशन सपकाल, आशा सोनिया, साईराज और विशाल, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, वंदना नगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, आराध्या और वैष्णवी, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा, ग्रामनगर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या, कोटवा नारायण प्रभावा, पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा, नेवदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल जिला अम्बा गढ़चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभी, अनस और रेहान, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, तनवी बोर्ड छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राजपाल गद्वी, राधिका, अनिष्का और तन्मय, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से लिखने वाले हैं, और ये जो हमने श्रोता पढ़े हैं ना, ये मोहनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा और मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू, ये हकीकतपुरा मऊ से, कुम्भार गली कोलगांव से है पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन और इनके परिवार के सभी सदस्य, उदयनगर से है बाबू भाई, भारती देवी उदयपुर से, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल विलेस, डेर पाटन गुजरात से धीरज वीराबारी, जलालाबाद वेस्ट से है सुरेश, गगन, पूनम, विशाल, प्रियदर्शनी और निमित आहूजा, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुर से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेराय, वड़िंगखेड़ा पंजाब से पिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। तो सुनिए तनु वेट्स मनु फिल्म का ये गाना।

तनु वेट्स मनु फिल्म का ये बढ़िया सा गीत हमने आपको सुनवाया, मोहित चौहान की आवाज़ और उज्जैनी ने इसे अपनी स्वर दिए थे, और संगीत कृष्णा का, राजशेखर है शब्दकार।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे जनाब, गिले शिकवे छोड़िए और मजा लीजिए आकाशवाणी खंडवा के शानदार प्रसारण का। साथ ही अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए हमें मेल कीजिए। मेल एड्रेस तो आप सभी जानते ही हैं। आपका मेल हमें मिलेगा और हम आपका पसंदीदा गाना सुनवाएंगे, तभी तो हम कहेंगे तेरा नाम लिया।
5: और श्रोताओं, अब हम नाम लेंगे उन श्रोताओं के जिन्होंने ईमेल भेजे हैं। ग्राम राजौरी, जिला महोबा बुंदेलखंड से हैं उदय भानपाल, जय हिंदपाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और बघेल परिवार के सभी सदस्य। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद, प्रदीप चंडीगढ़ सिटी से, सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, क्षीरसागर और संजय कुमार चौहान, सौराष्ट्र, राजकोट से जूली, जगदीश गुजराती, कंचन, कुसुम प्राची और प्रवीण पुजारी, मंडलू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा।

सतना से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा और माही, बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, बोरखेड़ा पित्रामल से है विनोद मुणत, नेहा जैन, मयंक मुणत, चेतन नहाटा, सिंघाजले खंडवा से राधेश्याम यादव, श्रीमती प्रभा यादव, शालिनी यादव, कामेश यादव, भारती यादव, राहुल यादव, तारानगर बड़वाहा से भारती कुशवा, मनीष कुशवा, पार्थ कुशवा, अनवी कुशवा, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला शाह और राजेंद्र शाह, आकार हाइट्स दुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, प्रिंस एकांश, सुमित कुमारी ध्वनि, प्रणीता सिद्धांत और टुक टुक, कांटा रोड वाशी महाराष्ट्र से विठल सुरोशी, सुषमा परिधि, मायरा चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रौनक, रविंद्र और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य, ग्राम पठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल राजेश, रेशमा गोवर्धन, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और प्रियांश, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक, उमर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, नूरमहल महसूल, सीतामढ़ी से मुसरत जहां, तलहत जहां, फरहत जहां, रिफत जहां, नूरहत जहां, साजिया शाहीनाज और नारिया नूरीनाज, मंडी टिक्कीपाड़ा छत्तीसगढ़ से जागेश्वर देवांगन और कजरी बाई देवांगन, स्थान कापसहेड़ा से आमरा नसवीन, आसमा बागवान मंजिल, छोटी बलिया करजस से नूर आयशा और इनके बहुत सारे साथी। सुनिए तुम्हारी सुलु फिल्म का ये गीत, गीत को गाया है, संगीत दिया है और शब्दकार है गुरु रंधावा।

रॉय फिल्म का गीत सुनिए आप सभी की पसंद पर। इस गीत को संगीत से सवारा मीत ब्रॉस अनजान ने, स्वर मीत ब्रॉस और कनिका का है, शब्द है कुमार के। तो आपको बता दें इस गीत को किसने पसंद किया है। राकेश पप्पू सेन लिखते हैं शिवकोटी से, निशा कुमारी सपना, ओम सेन मम्मी द्वार की बाई सेन, लिम्बोदी से गिरधारी लाल चौधरी और मनीषा बाई चौधरी, जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत और करमजीत, रोहिदास चौक पंडरपुरी, पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता यशराज और इनके परिवार के सभी सदस्य, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और कुमकुम, उच्च भट्टी बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी और शिवन्या, धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद बेबी आलिया और आयन बाबू, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मोहनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, कार्तिक शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ के ये जो श्रोता हैं दोबारा आ गए, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, वैष्णव कॉलोनी सनावस से इनके साथ हैं मुश्ताक अहमद, शाकिर और अलकमा खत्री, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल, हिंदुस्तान रेडियो मित्र से बन्ने बुजुर्ग, पलेरा टिकमगढ़ से है ये ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली और सोनम, इसके अलावा मामूलवाड़ी से सोपान तायड़े, वसंत राव भोजने, आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आरसी कांबड़े, जवाहरनगर दुर्ग से इनके साथ है करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल, ग्राम शिवटे सांगली से हनुमान शिंदे और ऋषि शिंदे, संगीता सिंधे भी इनके साथ हैं, दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, पंकज, सीमा, मानवी, तन्वी, बोहड़ा माठी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुटी भगत, पाकुड़ झारखंड से कुमार उत्तम कुमार भगत, श्वेता, बेगूसराय से अदीबा अफसरी और इस्माइल आज़ाद।

0: तो सारे ही नाम पढ़ लिए हैं और कुछ और फरमाइशों के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे आपके मिति गीत कार्यक्रम को लेकर। बढ़िया बढ़िया गीत सुनवाएंगे। फिलहाल समेटते हैं कार्यक्रम को यहीं पर। आगे दे विद्या सिंह को नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म नगमे आपके मीते गीत कार्यक्रम में FM 101.2 MHz पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

आज का वादा तो सब करते हैं, लेकिन जो खुशियां आज के बाद तक बरकरार रखे वही वादे सच्चे हैं। सत्य प्रेम की कथा फिल्म से सुनिए ये गाना मनन भरद्वाज और तुलसी कुमार की आवाजों में। मनन भरद्वाज के बोल और इन्हीं का संगीत।

और जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आज के बाद के वादों को भी संभाल के रखे, तो आपका दिल तो भर ही जाएगा बहारा से। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से सुनिए श्रेया घोषाल, सोना मोहापात्रा की आवाजों में ये

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना टू स्टेट्स फिल्म से, अरिजीत सिंह, चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

का अगला गाना हमारे सभी बड़े दिल वालों के लिए, 30 मार्क हाँ फिल्म से सुखविंदर सिंह की आवाज में और इनके साथ दिया है श्रेया घोषाल ने, अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

इस हाई नोट पे समाप्त करते हैं आज का चित्रलोक कार्यक्रम। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार, जो आधारित होगा माधुरी दीक्षित पर, तो सुनना ना भूलिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललिता मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: कुछ अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग जीवा माधुरी दीक्षित से।

फैंस की लाडली और घर में सबसे छोटी सबके दुलारी माथुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माथुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय क्षमता

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

अक्टूबर 1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवास्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई गई सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपहले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले।

0: 2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।
1: हमरे अटारे आपे, आजारे सवारे आपे।

0: इसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साइन तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आई। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हों।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो जब कर

0: मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण का कार्य 1 मई से प्रारंभ किया गया, जो 30 मई तक चलेगा। मकान सूचीकरण के लिए जिले में 2985 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें से 2180 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में मकान सूचीकरण पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार जिले में मकान का सूचीकरण 73% तक पूरा हो चुका है। जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डीपी वर्मन ने बताया कि नगरपालिका मलाजखंड द्वारा 14 मई को ही मकान सूचीकरण का 100% कार्य पूर्ण कर लिया गया और बालाघाट जिले में 14 मई तक 73% मकान सूचीकरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के खातों में 1500-1500 रुपये की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में 36वीं किस्त के रूप में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई, जिनमें बालाघाट जिले की 3,44,240 लाडली बहनों के खातों में 50,11,37,100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बालाघाट जिले में मलेरिया उन्मूलन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस की थीम मलेरिया समाप्ति के लिए संकल्पित अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा रही। इसी क्रम में जिला मुख्यालय बालाघाट में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मलेरिया की रोकथाम और उन्मूलन के लिए सामूहिक संकल्प लिया। महिला एवं बाल विकास शिक्षा तथा पंचायत विभाग के सहयोग से जिले भर में जन जागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस दौरान बैनर, पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से मलेरिया से बचाव, रोकथाम और समय पर उपचार संबंधी जानकारियां आमजनों तक पहुंचाई गईं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में संचालित जैव विविधता संरक्षण के अगले अध्याय के रूप में पिछले दिनों जंगली भैंसे की पुनर्स्थापना योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम से लाए जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना के लिए उन्हें बालाघाट जिले के सूपखार क्षेत्र में सॉफ्ट रिलीज किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश के लिए यह दिन ऐतिहासिक है। लगभग 100 वर्ष के बाद प्रदेश की धरती पर जंगली भैंस का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्य हो रहा है। बालाघाट जिले के जंगल में छोड़े गए जंगली भैंसों में से 3 मादा और 1 नर शामिल है। जिले में टाइप 1 डायबिटीज T1D से प्रभावित बच्चों और मरीजों की बेहतर देखभाल के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय बालाघाट में एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा मुस्कान ओपीडी में प्रत्येक शुक्रवार को T1D फॉलोअप क्लिनिक संचालित किया जा रहा है, जहां मरीजों को अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क उपचार, विशेषज्ञ परामर्श, मधुमेह शिक्षा तथा इंसुलिन उपलब्ध कराई जा रही है। ये क्लिनिक प्रत्येक शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चालित होता है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने 8 मई को क्लिनिक का निरीक्षण कर वहां उपचार प्राप्त कर रहे बच्चों एवं चिकित्सकों से चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित बच्चों को निशुल्क ग्लूकोमीटर एवं इंसुलिन का वितरण भी किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को जिला न्यायालय बालाघाट सहित जिले के कुल 24 न्यायिक खंडपीठों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में कुल 1085 प्रकरण विचारार्थ रखे गए, जिनमें से 1009 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। प्री लिटिगेशन के 835 प्रकरणों में

0: से 780 प्रकरणों का निराकरण कर 1,60,91,443 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। वहीं न्यायालयों में लंबित 250 प्रकरणों में 229 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिससे 1,57,47,930 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। इस प्रकार कुल 3,18,39,373 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। खेल और युवा कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में संचालित आरोह 2026 महाअभियान के अंतर्गत जिले में 1 मई से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बालाघाट के मुल्ला स्टेडियम मैदान, कराटे इंडोर हॉल, म्यूनिसिपल ग्राउंड, शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉकी फीडर सेंटर सहित जिला एवं विकास खंड मुख्यालयों पर नए स्वरूप में खेल शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इस शिविर के दौरान खेल प्रशिक्षण के साथ जुम्बा एक्सरसाइज, योगाभ्यास, आत्मरक्षा प्रशिक्षण तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने जैसी गतिविधियां भी कराई जा रही हैं। इसके अलावा FM रेडियो आकाशवाणी बालाघाट के माध्यम से भी खेल शिविर की गतिविधियों का प्रसारण किया जा रहा है। बालाघाट जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे

0: अभ्यास, आत्मरक्षा प्रशिक्षण तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने जैसी गतिविधियां भी कराई जा रही हैं। इसके अलावा एफएम रेडियो आकाशवाणी बालाघाट के माध्यम से भी खेल शिविर की गतिविधियों का प्रसारण किया जा रहा है। बालाघाट जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का था, वाचन था अभिषेक कटियार का।
2: FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है।
3: दिल से दिल तक पहुंचती आवाज आकाशवाणी खंडवा की।

0: है तो
1: हम हो चुके आपके। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। श्रोताओं, हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
1: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए, तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है, तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं, जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें, तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर

0: वाद्य यंत्र सीखना।
1: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
0: जैसे
1: जैसे प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
0: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
1: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
0: जैसे
1: जैसे कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
1: तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
0: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं।

0: साथु, ये कोई जादुई किताब है, मैं पूछती हूँ। साथु मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
4: हाँ।
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली।

0: लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जुगिंदर सिंह 1/6 रेजिमेंट में थे, उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर

0: बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
1: जो बोले सो निहाल का
2: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्ष दर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
2: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
0: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
2: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
2: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
0: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
5: आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
6: वंस अपॉन अ टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। ऑल्दो ही वाजंट वेरी बिग, ही वाज स्ट्रॉन्ग एंड he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
7: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good, because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher, because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside,

0: They only did to me what I keep doing to the other children. He thought. But how it hurt and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick anymore.
1: तो श्रोताओ, अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 101.2 MHz पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है नारी जगत कार्यक्रम।

नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम नारी जगत में और मैं हूँ आपकी सखी मीनू जैन। सखियों, आज है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। परिवार यानी एक धागे में पिरोई हुई खूबसूरत मोती की सुंदर माला। परिवार इंसान की पहली पाठशाला है। वह जो कुछ भी अच्छा या बुरा सीखता है परिवार से ही सीखता है। जब कोई मनोचिकित्सक के पास जाता है तो उसका प्रश्न परिवार से संबंधित भी होता है। सखियो, मुझे कहीं पढ़ी हुई एक कहानी याद आ रही है। जापान में ओचो सान नाम के व्यक्ति के परिवार में 1000 सदस्य थे। यह विशाल परिवार अपने सौहार्द के लिए पूरे जापान में मशहूर था। उनके परिवार की एकता की लोग मिसाल देते थे। इस परिवार की प्रतिष्ठा और ख्याति सम्राट यामातो तक पहुंची। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा परिवार और मनमुटाव टकराव नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। सच्चाई जानने के लिए सम्राट ओचो सान के घर पहुंच गए। परिवार ने उनका बहुत सत्कार किया। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। सम्राट ने ओचो सान से पूछा, मैंने आपके परिवार की खुशी और एकता देख ली है, क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इतना प्रेम हमेशा कैसे बना रह सकता है? सखियो, ओचो सान वृद्ध और दुर्बल हो गए थे। वे ज्यादा बात नहीं करते थे। सम्राट के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कांपते हाथों से उन्होंने कागज पर कुछ लिखा और सम्राट की ओर बढ़ा दिया। सम्राट ने कागज लेकर बड़ी उत्सुकता से उस पर नजर डाली, लेकिन उसमें एक ही शब्द लिखा था, सहनशीलता। सम्राट को आश्चर्यचकित देख ओचो सान ने कहा, मेरे परिवार की खुशी और एकता का रहस्य बस इसी एक शब्द में छिपा है। जहां सहनशीलता है वहां क्रोध नहीं पनपता। जहां क्रोध नहीं होगा वहां टकराव नहीं होगा। टकराव की स्थिति नहीं होगी तो बिखराव नहीं होगा। सही भी है सखियों, पहले संयुक्त परिवार होते थे, कितना अच्छा लगता था। संयुक्त परिवार जहां सबके विचार अलग अलग होने पर भी सखियों अगर कोई भी सहनशीलता है तो संयुक्त परिवार के अनगिनत फायदे हैं। जी हाँ, फायदे, क्योंकि आज जमाना ऐसा है कि बिना फायदों की कोई बात ही नहीं करता। बस जापान की वो कहानी याद कीजिए और अपने परिवार में हंसी खुशी प्रेम से रहिए।

सखियों पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, धीरे धीरे परिवार टूटने लगे और बिखरने लगे। आज इसी संदर्भ में हमसे बात की है श्रीमती रूबी जैन ने। विषय है पारिवारिक विघटन को कैसे बचाएं। तो सुनते हैं ये भेंट वार्ता।

0: सखियों, आज हम एक बहुत ही खास और जरूरी विषय पर चर्चा करेंगे, पारिवारिक विघटन को कैसे बचाएं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने ही रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, समय की कमी और बढ़ता अहंकार रिश्तों को कमजोर कर रहा है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती रूबी जैन। तो रूबी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद मीनू जी, सभी सखियों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मीनू जी, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत आभार।
0: रूबी जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है।

0: आज के समय में पारिवारिक रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखती हैं?
1: जी मीनू जी, मेरा मानना है आजकल के समय में पारिवारिक रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या है परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ का ना होना। छोटी छोटी बातें दिल में रख लेना, परस्पर विश्वास की कमी, मेलजोल का ना होना। मीनू जी, बढ़ती व्यस्तता एवं बढ़ता आर्थिक बोझ से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
0: जी रूबी जी, आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया का जमाना है। क्या आपको लगता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया रिश्तों में दूरी बढ़ा रहे हैं?
1: जी, आजकल सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्म्स हैं। लोगों ने कई ग्रुप्स बना रखे हैं, फैमिली ग्रुप, सिबलिंग ग्रुप्स, जिससे आपसी बातें तो शेयर कर सकते हैं, सखियां अपडेट्स भी काफी कर सकती हैं, परंतु दूसरी ओर फैमिली मेंबर्स के बीच में संवेदनाओं की कमी देखी जा रही है। निश्चित ही इंसान इनके हाथों में मात्र कठपुतली बनकर रह गया है। सखियों से मैं इतना कहूंगी कि इस काल्पनिक दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो और अपने परिवार को कुछ वक्त दो।
0: रूबी जी, आजकल सभी में सहनशीलता भी कम देखने में आती है, जिससे छोटी छोटी बातें भी विवाद का रूप ले लेती हैं। इसे कैसे रोका जा सकता है?
1: मीनू जी, बिल्कुल दूसरों की सलाह एवं दखल लोग आजकल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस पर मेरा मात्र इतना ही कहना है, किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना जरूरी है, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल बंद नहीं करो तो जल यूं ही व्यर्थ चला जाता है।
0: रूबी जी, आजकल लड़कियां सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, जिससे उनमें भी थोड़ा थोड़ा ईगो देखने में आता है। रिश्तों में अहम यानी ईगो कितना नुकसान पहुंचाता है?
1: मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों करूं? ईगो क्या होता है? मैं रिश्ता किससे चलता है? हमसे। जहां मैं ज्यादा होगा वहां तो है ही ईगो। याद रखिए, रिश्ता वहां नहीं टूटता जहां झगड़ा होता है, पर रिश्ता वहां टूटता है जहां ईगो होता है।
0: बहुत सही बात कही आपने। सच में कई बार छोटी छोटी बातें ही बड़ी बन जाती है। रूबी जी, परिवार में सभी के विचार, पसंद नापसंद अलग अलग होती है, ये तो हम सब जानती ही हैं। अगर परिवार में मनमुटाव हो जाए तो उसे सुलझाने का सबसे आसान तरीका क्या है?
1: मीनू जी, हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी या कमी होती ही है। परिवार का सदस्य होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है हम उसे उसी रूप में स्वीकार करें। वो कहते हैं ना, अगर रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ और अगर बात जरूरी है तो रिश्ता भूल जाओ। कहते हैं छोटी सी माफी रिश्ते सुलझा सकती है।
0: तो क्या माफ करना और माफी मांगना रिश्तों को मजबूत बनाता है?
1: जी, मेरा मानना है माफी मांगने की कला और माफ करने की कला अगर आप में है, दोनों है, तो कोई भी रिश्ता कमजोर नहीं हो सकता। उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाया करते हैं।
0: रूबी जी, रिश्तों में मनमुटाव होने का एक और कारण जनरेशन गैप भी है। उसे कैसे कम किया जा सकता है?
1: मैं अपनी सखियों से कहूंगी, जनरेशन गैप को फिल करने का एक ही तरीका है, वो है ओपन कन्वर्सेशन, यानी कि खुला संवाद। एक एज के बाद पेरेंट्स को बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, दो कदम आप चलो तो दो कदम हम चलें।
0: रूबी जी, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब किन्हीं कारणवश वो एकल परिवार हो गए हैं। तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार, किसमें रिश्ते ज्यादा मजबूत रहते हैं और क्यों?
1: निश्चित ही एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है, परंतु इससे सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों में कमी आई है। बच्चों में टीम वर्क की भावना विकसित नहीं हो पा रही है। क्या खूब कहा है, झाड़ू का

0: कचरे को साफ नहीं कर सकता, परंतु घास के कई तिनकों को झाड़ू बनाकर संगठित किया जाए तो सफाई की जा सकती है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है रूबी जी आपसे बात करके। और अंत में हमारी सखियों के लिए आपका क्या संदेश होगा जिससे वे अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बना सकें?
0: अंत में मैं अपनी सखियों को कहूंगी, परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है, परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है, परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है, परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है।
1: रूबी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमसे अपने विचार साझा किए।
0: धन्यवाद मीनू जी, धन्यवाद मेरी प्यारी सखियों।

0: पारिवारिक विघटन को कैसे बचाएं। अभी हमने रूबी जैन से मीनू जैन की बातचीत सुनी। ये सुनकर सखियों मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ रही है। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से बात करो, रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे, बस थोड़ा सा साथ तो दो। सखियों, 17 मई को एक दिवस आता है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। यह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसे अक्सर साइलेंट किलर यानी मौन हत्यारा कहा जाता है। सखियों, हाई ब्लड प्रेशर जो हर वर्ष 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। सखियों, उच्च रक्तचाप वह स्थिति है जब हमारी धमनियों में बहने वाले रक्त का दबाव सामान्य से ज्यादा हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर के शुरुआती लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते। कई लोग वर्षों तक इससे पीड़ित रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। यही कारण है कि इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी सावधानियां अपनाएं तो उच्च रक्तचाप से काफी हद तक बच सकते हैं। रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना या तेज चाल में वॉक करना, भोजन में नमक और तली हुई चीजों को कम खाना, हरी सब्जियां, फल और पौष्टिक भोजन खाना, तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान करना, और समय समय पर रक्तचाप की जांच करवाना। क्योंकि सखियों, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए खुद भी सजग रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सखियों, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि रसोई गैस की कितनी दिक्कत हो गई थी, साथ ही इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो ऐसा क्या करें कि गैस हमारी ज्यादा दिनों तक चले, इसके लिए हम आपको बताते हैं कुछ टिप्स। प्रेशर कुकर का उपयोग करते समय कुकर में डब्बों को एक के ऊपर एक रखकर दाल चावल साथ में पका सकती हैं। इससे खाना तो जल्दी तैयार होगा ही, साथ ही गैस की भी बचत होगी। सखियों, दाल चावल को कुछ देर भिगोकर पकाएं और राजमा छोले चने को रात भर भिगोएं। सखियों, छोटे बर्नर का उपयोग चाय, तड़का या कुछ गर्म करने के लिए करें, जबकि बड़े बर्नर का उपयोग भोजन पकाने के लिए करें। छोटे बर्तन के लिए बड़ा बर्नर उपयोग करने से गैस वेस्ट होती है। दूध चाय उबालते समय ध्यान रखें कि अगर दूध उफन जाए तो अच्छी तरह से उसकी सफाई करें, साथ ही बर्नर को समय समय पर साफ करती रहें, क्योंकि साफ बर्नर पर खाना जल्दी पकता है, वही गंदे बर्नर पर गैस की बर्बादी होती है। तो सखियों, ये थी आज की टिप्स, और अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ सखियों आज के नारी जगत कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है, तो कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी सखी मीनू को दे इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नारी जगत कार्यक्रम FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

0: माजिद शोला कवाली की आवाज में सुन रहे थे आप ये कवाली। पायम सिद्दीकी सईदी ने इसे लिखा, मामी बाचू का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

आवास में कुलदीप सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से आप सुन सकते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी।

अनूप जलोटा की आवाज में सबा अफगानी का कलाम आपने सुना, अनूप जलोटा का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये श्रृंखला आप सुन सकते हैं। श्रृंखला की 28वीं कड़ी आज आपको सुनाई जाएगी। और हेलो सहेली कार्यक्रम 3 बजे से सुनेगा, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें होंगी पूरी। शाम 4 बजे होगा पिटारा में गीतों भरी कहानी का सिलसिला, कहानी जीवन एक सरल रेखा, जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल है ये, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनिए, द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से, और इसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

सुदर्शन फाकीर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। जगजीत सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

रहा तिंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चलें कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत और संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रूट बूंदे। इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

खैरा गैरा नथु खैरा। इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाएगी, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल, कवाली, पॉप गीत और लोकगीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है, तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को

0: आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपए और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपए हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत चुने गए हैं जिनमें पारिवारिक रिश्तों की भी बातें हैं और परिवार का आपसी संगठन, आपसी प्रेम भी दर्शाया गया है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक।

बिल्कुल कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा परिवार। हम फिल्म से गीत आपने सुना, सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी में आज सुनेंगे सुनिएगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्बीर कुमार, चंद्रानी मुखर्जी, उत्तारा केलकर और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही है पारिवारिक एकजुटता का संदेश।

बिल्कुल राहुल देव बर्मन का संगीत कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुनवा रहे हैं ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता की बातें तो हैं ही, साथ ही है पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं साधना सरगम और साथियों की आवाजें हैं महबूब के बोल, ए आर रहमान का संगीत, फिल्म डोली सजा के रखना। सुनिए ये गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10 बजे। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाएं तो चिंता ना कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। विविध भारती पर इन दिनों आप कई कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

0: जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। तो वफादारी का शिकवा क्या,
2: जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
3: अरे क्या

0: दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे,
0: सच भाई हुए हैं।

परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मधुर सुल्तानपुरी के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता के बात हो।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, सोनू निगम की आवाज, राजशेखर की बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

इस गीत के साथ ही यादों के महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के बोल। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही हैं कि रोजाना हमारी फेसबुक पेज पर हम पोस्ट करते हैं एक इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे होते हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले गीत। यानी रोजाना कार्यक्रम में जो भी गीत शामिल होते हैं वो उसी टेक्स्ट से आते हैं और उनमें कुछ शब्द ऐसे समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना होता है हमारे श्रोताओं को कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा तो इसी बात में है कि आपके गानों की लिस्ट और हमारे गानों की लिस्ट किसी तरह से मैच हो जाए। और अगर आपके कुछ गीत अलग भी हैं तो भी आप उसे हमारे पोस्ट पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्या पता शायद वो गीत शामिल हो जाए कार्यक्रम में। और आज की जो इबारत है या टेक्स्ट है वो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और हमारे जो साथी अब तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं वो जा सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज मिल जाएगा। बहुत से साथी पूछते हैं कि कौन सा असली पेज है, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी हिंदी में लिखा हुआ है और उसके बाजू में एक नीले कलर का टिक बना हुआ है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फॉलोअर्स 1000K लिखा होगा, यानी माफ कीजिएगा 100K लिखा होगा, यानी कि 100,000 फॉलोअर हैं। और यही पेज विविध भारती का आधिकारिक पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इसमें ही आपको ये पोस्ट नजर आएगी। तो आज की इबारत मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूं। गर्मी जहां झुलसाती है वहीं इससे जुड़ी यादें हमारे मन पर मीठे नर्म फाहे रख जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, रेलगाड़ी का सफर, कभी नानी की कहानी तो कभी दादी का दुलार, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खेल खेल में दिन बीत जाते थे भाई, सैर सपाटे, पिकनिक, बाग बगीचे और मस्ती, वो दिन भी क्या दिन थे। तो इस इबारत से अंदाजा तो हमारे बहुत से साथियों ने लगाया है कि आज बातें बचपन में मिलने वाली गर्मियों की छुट्टी की है। और साथ ही बहुत सी बातें होंगी जहां हम घूमने जाते थे, रेलगाड़ी के सफर की बातें होंगी, ऐसा हमारे साथियों ने कुछ अंदाजा लगाया है और शब्द भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आप आपकी गर्मियों की छुट्टियों की यादें हमसे साझा कर सकते हैं और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, क्योंकि इसमें तो हमने 2-3 खेलों के ही नाम बताए, लेकिन आप कौन कौन से खेल खेला करते थे ये बता सकते हैं। क्या गर्मियों की छुट्टियां आपके लिए फिल्में ज्यादा देखने का मौका लेकर आती थी या कुछ नहीं, और क्या गर्मियों में आप पिकनिक का प्लान बनाते थे, या जब बत्ती गुल हो जाती थी तो गर्मी से निजात पाने के लिए क्या आपने हाथ वाला पंखा झरा है, या अंताक्षरी खेली है अपने साथियों के साथ, कौन सा हुआ आपका पसंदीदा गाना, ये सब हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि नानी और दादी से आपको डांट ज्यादा पड़ती थी या दुलार ज्यादा मिलता था, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बचपन में थे शरारती या शरीफ, या बचपन की इन यादों को सुनकर आप भी भरते हैं ठंडी ठंडी आहें, या आपके अंदर अब भी आप अपने इस बचपन को जीते हैं। ये सारी बातें हम तक पहुंचाइए। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत से कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं पहले कार्यक्रम का पहला गीत।

मुकेश की आवाज में देवर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और याद किया जा रहा था बचपन को, क्योंकि आज हम भी कुछ याद ही कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों की बातें हो रही है। हमारे एक साथी ने लिखा कि सुरीला सफर में आज अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, बचपन की गलियारों में झांकेंगे। तो आज की इबारत में से याद शब्द तो हमने ले लिया एक गीत में, और कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं आप हमें बताइए। हमारे साथी ने बताया, हमने पूछा था कि कौन कौन से और खेल आप खेलते हैं, क्योंकि हमारे इबारत में तो सिर्फ दो खेल का नाम है। तो उन्होंने बताया कि पकड़ दांव, लंगड़ी, खो खो, रुमाल दांव, कबड्डी जैसे कई खेल खेला करते थे। वेकेशन में दोस्तों के साथ उनके खेतों में जाते थे, नहाते थे, कच्चे आम, इमली, शहतूत जैसे फल खाने का आनंद भी खूब उठाया है। बचपन अनमोल था, कोई भी कीमत से उसे नहीं खरीदा जा सकता। हमारे एक और साथी ने बताया कि बचपन में पढ़ता था तब दोस्त फिल्म दिखाने हमें काका जी सभी कजन भाई को लेकर लेके गए थे। बचपन में छोटे धर्मेंद्र होते हैं तो पिताजी उन्हें आती जाती रेल दिखाते हैं, गाना बजता है, हम उसे आकाशवाणी गीत कहते थे। फिल्म में फिर कई बार गाना बजता है, जब धर्मेंद्र बड़े हो जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं तब भी गाना बजता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और हमारे एक और साथी ने कहा कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हम सुबह का खाना लेकर अपने परिवार के साथ खेत पर चले जाते थे, वहीं वटवृक्ष की छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ हम खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, खाना खाते थे, थोड़ी देर सुस्ता कर पेड़ के कैरियां तोड़कर लाते थे। जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता था तो हम पहले उसका रस पी लेते थे, कितना सुकून मिलता था, काश वो बचपन के दिन वापस लौटकर आ जाएं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज गीतों के जरिए जरूर आपको कुछ यादें ताजा हो सकती हैं। हमें ये भी बताइए कि क्या आप बचपन को जीते हैं अब भी, क्या पिकनिक वगैरह पर कहीं जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। और ये सारी बातें बताते बताते हमारे साथी जब गर्मियों की बात कर रहे हैं तो वो पसीने की बात बहुत कर रहे हैं कि भाई बड़े पसीना छूटता है, गर्मी बड़ी तपती है, तो एक गीत वैसा ही सुना दें आपको। बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है।

हुस्न का गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाजें, योगेश के बोल, रॉबिन बनर्जी का संगीत। फिलहाल तो हमें नहीं दिखा है कि किसी ने सही जवाब हमें भेजा हो, पर हो सकता है नेटवर्क के इश्यू की वजह से कभी कभी लेट भी जवाब मिल जाता है। हालांकि हमारी एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टियां यानी ननिहाल या दूर गांव में सफर पर जाने का मौज मस्ती का सुहाना मौसम। आपने सभी के बचपन वाले से मनभावन यादों को आज हम याद करने वाले हैं और उन्होंने बहुत से गीत भी भेजे हैं जिन शब्दों से आज के कार्यक्रम में गीत हो सकते हैं। अब उन्हें ये देखना होगा कि भाई उनके गीत आज के कार्यक्रम के गीतों के लिस्ट से मैच होते हैं या नहीं। हालांकि हमें लगता है कि कोई ना कोई गीत तो जरूर सबकी लिस्ट से मैच हो ही जाएगा। हमारे एक और साथी बता रहे कि हमने पूछा था ना कि नानी और दादी से डांट पड़ती है कि प्यार मिला हमेशा, यानी शरारती थे या शरीफ। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, बहुत से साथियों ने तो कह दिया वो शरीफ थे भाई। और एक और साथी कहते हैं कि दादी नानी से ढेर सारा प्यार और डांट भी मिली। मेरी दादी हमें लेकर सब्जी भाजी लेने जाती, लौटते समय कुछ ना कुछ खाने को पक्का मिलता। और नानी तो जब भी घर आती तो बच्चों के लिए चीजी और खिलौने की प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार क्या लाएंगी। हमने तो अभी भी उनके खिलौने बहुत संभाल कर रखे हैं। नानी दादी नाना दादाजी सभी बहुत याद आते हैं और हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में अधिक ही याद आते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने साथियों के साथ गिल्ली डंडा, चुपम छुपाई, पोसंपा, लड्डू कंचे, माफ कीजिएगा, लट्टू कंचे, आम डंडी और चोल पुलिस कैरम ये सारे खेल खेले हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के गांव की बात हो तो गर्मी हालांकि सभी हदें पार कर रही है, लेकिन अगर नानी के घर की बात हो तो सर्दी हो गर्मी हो सभी फुर हो जाती है। पिछले एक दशक से हमारे इंदौर से रेल मार्ग बंद है तो सफर में पहले जैसा उतना आनंद नहीं आता, लेकिन वो मजा नहीं आता जो रेल की गाड़ी में यात्रा करते हुए आता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दादी माँ बहुत ज्यादा डरा के रखती थी, हम लोगों को उनकी आंख से डर लगता था, हम लोग बहुत बदमाशी करते थे इसलिए। और नानी भी के घर में नानी को ज्यादा डांटने का मौका नहीं मिलता था, पर डर डर के हम लोग रहे बचपन में भाई। लेकिन आप साथ में तो बता रहे ना कि इतनी शरारतें करते थे, थोड़ा डराना तो जरूरी पड़ता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मियों में जब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता था तो समय बिताने के लिए हम घरेलू इंडोर खेल खेलते थे, जिसमें चूड़ियों के टुकड़े और इमली के बीज के साथ खेलने वाला खेल जो कि लूडो से मिलता जुलता खेल था। जमीन पर चौक से कुछ ब्लॉक ड्रॉ करके चार अलग अलग रंग की चूड़ियों को रखकर इमली के बीज बनते थे हमारे पास और हम इसे खेलते थे। इसे चाई चूड़ी कहते थे स्थानीय भाषा में भाई। इस तरह का खेल हमने भी कुछ खेला है और बड़ा ही आनंद आता है उस खेल को देखकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई हम कार्यक्रम में बैडमिंटन वगैरह उन्होंने बहुत खेला है, अंताक्षरी खेली है ऐसा वो बता रही हैं। बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी छुपाई बहुत हम खेला करते थे बचपन के टाइम से। हमारे साथियों ने कहा बहुत सारे खेलों के बारे में बता रहे हैं।

0: और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि झुलसती हुई तेज गर्मी में रेलगाड़ियों का लंबा सफर करीब 1500 किलोमीटर तय करके हम अजमेर से पश्चिम छोर गुजरात के सोमनाथ तीर्थ पर आज दोपहर पहुंच गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई आपके साथ आपका ये सफर सुहाना हो, हम ये कह सकते हैं। और एक गीत क्यों ना बताया जाए, क्यों ना सुनाया जाए आपको, क्योंकि बात हो रही है छुट्टियों की, तो ऐसा ही एक गीत आपके लिए भेज रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है।
1: तूने मुस्कुरा के देख

मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई के मेरी छुट्टी हो गई, जान किस अदा से जान किस

0: जान किस अदा से, जान किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई, जान किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई।
1: मोहम्मद रफी और कृष्णा कल्ले की आवाज में आप सुन रहे थे शंकर खान फिल्म का ये गीत। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि इससे पहले वाली जो फिल्म का नाम हमने पूछा था हुस्न का गुलाम, वो जवाब भी आपने हमें दिया, आपका जवाब हमें मिल गया। हमारे साथ ही आप सुन रहे हैं मिलकर हम सभी सुरीला सफर, जिसमें आज इस इबारत जो हमने भेजी है जिसमें गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस में बांट रहे हैं और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं और आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। देखते हैं कहां कहां तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं है, मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज भी बचपन में जीता हूं, एरोप्लेन की आवाज आती है तो ऊपर देखता हूं, रेलवे स्टेशन से गुजरती गाड़ी के डिब्बे गिनता हूं, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूं। एक साथी ने बताया कि बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करते थे। और हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई, कोकोनट, रंग पूछने वाला

खेल, चोर सिपाही, खो खो आदि खेलते थे। एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले के बच्चे लड़कियां मिलकर 7x7 स्टोन्स वाला गेम होता था, जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था। ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया, कबड्डी, लुका छुपी, मार दड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से झलने वाले पंखे याद करें हमारे एक साथी जो उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो नानी के घर में ही रहा करते थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के यहाँ तो साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी, हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग उम्र के साथ उसे छिपा देते हैं, पर कुछ लोग बचपना खुलकर जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है, तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत हैं वो सुनवा दिए जाएं। भाई दादी वाला गीत तो हमने चुन लिया है, हो सकता है आपके लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी पर आधारित दो गीत हमारे पास हैं। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए। तो आप हमें बताइए, तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं। किस फिल्म का ये गीत है ये भी बताइए।

घराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कहने की आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयाम को दर्शाती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र, बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इतनी रोमांच होता है गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गाँव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लट्टू खेलना, चोर सिपाही खेल याद आते हैं तो

0: आंखें सजल हो जाती हैं। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम झरने के पास समंदर के किनारे पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर जहां सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहां जाएं, और गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमाने ले चलें, जहां के एडवेंचर देखते सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे एक और साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है, और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो, चिड़िया पकड़नी हो, चिड़िया को पकड़कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के यहाँ जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते, और जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते। कभी कभी तो चोट भी लगती थी, और बहुत सारे खेल थे, कागज पर चोर पुलिस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, कच्चे गिट्टे बहुत खेलते थे, हार जाने पर कच्चे और गिट्टे फेंक भी देते थे। तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे एक और साथी कहने की बचपन में हम चक्का चलाते थे, और रेडियो जब बजता था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं, और हमें आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे एक और साथी बता रहे कि गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ, मिट्टी के घड़े का पानी, ढेर सारे रसीले आम, रात में छत पर पानी छिड़क कर बिस्तर लगाना और तारों को गिनते हुए सो जाने। ये सुकून आज के एयर कंडीशन में भी नहीं मिलता। जैसे कि आपने जिक्र किया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था, और हम दोस्त के घर का दरवाजा, हर दोस्त के घर का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम फाहे की तरह है, और जो जिंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे कि सफर में सबसे मजा आता था, ऐसे तो गार्जियन कुछ नहीं खरीदेंगे, पर ट्रेन में ये डिब्बे में दूध का मलाई, बर्फ, लेमन जूस, ककड़ी, मूंगफली बहुत बेचने वाले आते थे, और हम खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे, खाते थे। ऐसा तो जरूर होता था, और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफर में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर दो गाने हमारे पास हैं, तो नानी की नाव चलाएं या नानी की मोरनी की बात होगी, ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बताइए किस फिल्म का है।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली, लंबे सफर पे आओ चली, भागो चली, जागो चली, आओ आओ आओ, आओ। ये कैसे चले, लाओ पैसे चले, खड़े हो जाओ, तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े, ला ला ला ला ला, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जाओ पहले वो तीन, फिर तीन, फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ, पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो,
3: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली, लंबे सफर पे सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए, और नानी की नाव में डाले गए।
2: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक तलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की नाल, एक भीवर का जाल, एक लहसुन एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक ब्री, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया। चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन एक आलू, एक भीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक तलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
2: मगर नानी क्या कर रही थी?
3: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
2: कितनी गहरी?
3: नदिया से गहरी, दिन दोपहर।

0: ये रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16:30, 15:15, 2 3 34 44 बना 75 96 97 85 90 नंबर 25 गले में रस्ता।
1: आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अशोक कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, बसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रही हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था, पर मेरी 3 बुआ बाहर रह करती थी। गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे, तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं। खूब प्लानिंग करते थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे। सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते। एक घर के सहायक थे, हम लोगों के साथ रहते थे। मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी। उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था। दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं इकट्ठा होते थे। फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी, लड़ते भिड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज्यादा चीजें सोचते नहीं है, अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे, सीटी बजाना, कोयल की आवाज, टक टक की आवाज निकालना आदि। वो सब आवाज मेरे अंदर बैठी है, बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है, अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वही हमारे साथी ने बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारे एक साथी कह रही कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियां देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वटवृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज्यादा उन्होंने गीत पसंद किए क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है। और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना दे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने की नानी की डांट तो नहीं पड़ी पर उनका वो 54-58 और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज्यादा पाया। हाँ कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो जरूर कोई ना कोई पीटता। दोनों ने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

मैंने नहीं तो

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन से पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए एक छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2-3-5-10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग ऐसे भोले भाले होता

होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे, ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़, कड़ाई या गिल्ली डंडा। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे, वो भी रेलगाड़ी से। उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे। सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीजों का। और एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गांव जाने को मिलेगा। वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहां चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किसकी आवाजें हैं इसमें।

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तो अब भी बना हुआ है। और हमारे एक और साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कहने कि गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है लेकिन

गर्मी की छुट्टियों के विमधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं, वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे, पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्समैन को देखकर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

लैड साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना और जैसा इसमें कहा गया भी समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहता है 24 घंटे।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 28वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण, और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जन जागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रचकर वे गाया करते थे। गांव गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंद दास गांव गांव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में देहात के बीच बनी चौपाल पर, नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचा।

थोड़े ही समय में चारण मुकुंद दास बंगाल के एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए

सभी बंगाली स्त्रियों, तुम ये कांच की चूड़ियां कभी इस्तेमाल न करो। तुम सब गृह लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। कांच की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर सौभाग्य चिन्ह धारण

0: to Hashi, Kapuk Medini Pimparakate Bande Mataram, Bande Mataram.
1: ये वो समय था जब स्वदेशी का प्रचार अपने चरम पर था। मातृ भंडार अर्थात मायेर वस्त्र, इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिले तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
2: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये शब्द लोकप्रिय हो गए हैं। माता का वंदन, इतना ही उसका अर्थ।

है, उसमें कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं। फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहां पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन।

बंगाल के विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिल, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे

0: एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिल, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेता कर्जन के आह्वान का खोखलापन उजागर करते हुए मुस्लिम समाज से इस आंदोलन में शामिल होने का सार्वजनिक आह्वान कर रहे थे।
1: कर्जन के इस एक कदम से ब्रिटिश सत्ता को जो झटके लगे थे उनसे उबरना ब्रिटिशों के लिए मुश्किल हो रहा था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सेनापति बनकर आए लॉर्ड किचनर के साथ कर्जन के बार बार मतभेद होने लगे। राजनीतिक फैसले लेते समय वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में सेनाधिकारियों का स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार को बताया। लेकिन लंदन की सत्ता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
0: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
2: कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले, जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी।
1: बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग और व्यापार पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हो रही है, इसलिए यह बैठक अहम मानी जा रही है। यूएई के एक वरिष्ठ मंत्री ने प्रधानमंत्री को अपने देश में बेहद
1: का प्रभाव आज पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मोन्स को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में होगी। श्री मंत्री ने कहा कि एनटीए में बड़ी सुधार जरूरी है ताकि भविष्य में धांधली ना हो। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी मेधावी छात्र शिक्षा माफिया के साजिश की वजह से अपने हक से वंचित रह सके।
2: नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया, 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूं, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और असरदार वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए सभी

0: ही साझेदारों के साथ काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में बदलाव की सख्त जरूरत है। उनका कहना था कि नई व्यवस्था में विकासशील देशों और उभरते बाजारों की बात सुनी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मनोहर यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य उज्जैन को लंबे समय तक फायदा पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों के बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके लिए समिति का गठन हो चुका है और उसकी पहली बैठक भी संपन्न हो गई है। श्री यादव ने बताया कि सरकार सभी वर्गों और समाजों से सुझाव लेकर आगे की राह तय करेगी। प्रदेश में आज से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 की शुरुआत हो गई है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भोपाल के समन्वय भवन में इसका शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ओबीसी वर्ग के 4000 युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। देवास के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने चोइथराम एमवाय और अमलतास अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने के निर्देश दिए। कल सुबह हुए इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई थी। आईपीएल में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ में होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के अधिकांश हिस्से इन दिनों भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 4 दिनों तक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। आगर मालवा में श्रम विभाग द्वारा कल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम योगी मानधन योजना के पंजीयन किए गए। झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति की बैठक हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और बिंदु का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का

0: पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
5: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो

0: आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अंबालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अंबालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई।

0: यह सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। खुमार बाराबंकवी ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला के इस गीत में।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनिएगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

0: गोपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, हाँ बोलो ना।

जैसा घटिया काम करते भी तो क्यों करते। अरे अरे डॉज गाड़ी के इंजन की कसम,

0: नहीं है कोई धंधा
1: जान की तेरी है।

राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: इसके साथ ही आज का सदाबहार नक में कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं, आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना। अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक बड़ा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन

0: आइए देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: जी जी जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट्स से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो 3,000 बच्चे हैं वो अपनी चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, यानी तो आप अकेले पड़ जाओगे, तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब साथ होते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया, और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है, और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का।

0: एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया।
1: हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली,
1: बताइए कौन सहेली बात कर रही है?
2: जी मेरा नाम वर्षा धगत है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
1: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं?
2: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
1: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
2: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
2: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है,
1: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
2: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है,
1: और सच
2: ये हर महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
1: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कोई तो है, है ना?
2: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
2: बिल्कुल, हर महिला को और खास तौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है।
1: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
2: बिल्कुल सही कहा सुना लीजिए आपने जी।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से।
0: नांदेड़ से फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउसवाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउसवाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, मैं काम तो तुझे लगाई करें।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती है।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ।
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात।
1: समय निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं।
0: जी,
1: उन्हीं के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी,
1: बहुत महत्व है सभी के लिए।
0: सचमुच यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना?
1: जी।
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
1: जी जी बहुत।
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो है उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना।
1: जी,
0: बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती, खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाया बोलते कभी कम ज्यादा हो जाता है।
0: और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: खाने की तो अच्छी से आपने थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत से फल मिलता ऐसा हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ।
0: और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश,
1: गाने सुनते हो? रहता रेडियो दिन भर
0: रेडियो चालू रहता। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है आपका?
1: राजबाई। राजबाई धाकड़।
0: राजबाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से।
0: बड़े गांव?
1: हाँ, गुना जिले।
0: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
0: क्या बात,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सचमुच यानी परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना?
1: अच्छा लगे, देवर है, देवरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनती हैं।
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती है आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो गाड़ी दो गाड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत से आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसे लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आप।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी विलास भोले
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती है आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम सिंपल।
0: घर का काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती है आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो

0: कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है, घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए या कहना चाहिए कि हाँ हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती है आप, कभी खुद की खुशी का काम करती है आप, यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती है अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे दिन में बच्चों का वो करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है,
1: हमारा खेत में जाना पड़ता
0: है, खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके हैं कौन, माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद सातवी से बोल रहे हैं।
1: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
0: हम हाउसवाइफ हैं और रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
1: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: हम चाहे सिलाई उलाई भी करते हैं।
1: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, है ना?
0: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
1: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी कि खुद के लिए आप जीते हैं क्या? ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये एक घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
0: हाँ करते हैं, एक घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं।
1: और उसमें आपको खुशी मिलती है?
0: खुशी मिलते हैं, हाँ, अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आप
0: विविध भारती सुनते हैं जी?
1: जी। और आपने पसंद
0: दो महीना से छटपटा रहे थे, हाँ जी, कब दो महीना पूरा होगा?
1: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: जसमती मैया तेरे बोले नंदलाला।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए, हाँ। अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, पास तालाब है, महाबलेश्वर है।
0: जी जी जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है
0: जी।
1: नटराज मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ। मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ। मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया?
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज

0: मैं घर रही हूँ, 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
0: जी मेरा 57 एज है दीदी।
1: अच्छा
0: 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
1: क्या बात,
0: साड़ी सेंटर में, सिटी साड़ी सेंटर में।
1: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
0: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल सोया है, मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
1: जी।
0: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
1: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं। हाँ, प्यारे प्यारे गीत सुन
0: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
1: क्या बात,
0: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
1: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना?
0: जरूरी है, बराबर है
1: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती है
0: दीदी? बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूपों की रानी।
1: बहुत प्यारा गीत आपने चुना, ये गाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
0: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग का लाना पड़े।

0: से अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानी 4002466 2। दूसरा नंबर है 2867028287028। और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की दहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल गाय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर था में अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगे का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं।

सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है? क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना। देखो हम 150 रुपया लेंगे। ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर

उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो झूठी साबित हो जाएगी। यूं ही सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हो, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहां हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाक्य अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद ननोई आ रहे हैं खाने पर, उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आरा

राम से ब्याह गईं। पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह,

में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए

जिसे उसने एक साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है। मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे। वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहती? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़

तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कित

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर।

0: लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: छाया गीत
2: लग जागने,
1: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: तेरे मेरे सपने अब
1: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में,
1: याद रहे ये वो कैप्सूल है जो धुनों को आवाज को और यादों को जीवंत

0: पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। पारिजात की खुशबुओं से मुअत्तर ये हसीन रात, सहमे गुलशन में फूलों के हसीन साए, चांद सितारों की ये चिलमन, शोख नजारों की ये अंगड़ाइयां, तो धड़कनों की जुबानी मोहब्बत की कहानी अजब समा दिखाती है। सच कहूं बुझती नहीं ये शम्मा जले जाती है।
1: पार

अफसाना जिंदगी सुनाएं तो अच्छा, आईना ए आरजू दिखाएं तो अच्छा, ये रात तन्हा न जाए तो अच्छा, मेरा मुकद्दर उनकी जुल्फों में सवर जाए तो अच्छा। क्या कहूँ, हर एक नजर ये काम करती भी नहीं, हर एक निगाह दिल पे यूं उतरती भी नहीं।

निषाद हैं जो शाद भी हो जाएंगे, एक हल्के से तबस्सुम से आबाद भी हो जाएंगे। गुलशन में उनका आना कुछ ऐसा ही होता है, फूलों में खुशबू शाखों पे तराना होता है।

के आने से समा और भी पुरनूर होता गया, रात कटती गई, चांद और भी निखरता गया। क्या कहूँ, चलो उनसे ही पूछ लेती हूँ, ऐसी उलझन में कट न जाए ये तमाम रात। इश्क में दोनों तरफ कुछ ऐसा ही समा होता है, ये अफसाना मोहब्बत हरफों में कब बयां होता है।

कसमें वो मोहब्बत, वो मुद्दतों की रवायत, मालूम यही होता है कि फिर लौट आएंगे, उनके शोख नजरों पर निगाह करके रह जाएंगे। है शुक्र कि उनका इधर ही आना हुआ, चिलमन उठी भी नहीं और दिल आशिकाना हुआ।

रफ्तार धड़कनों की बताती है कि वो आए हैं। शाखे गुल की लचक है या शानों पे जुल्फों की बिखरी हैं लटें। ये परेशानियां वो आंखों को झुकाने की अदा, अपने आप को खुद से ही छुपाने की अदा। यूं लगता है कि आज ये दिल संभल न पाएगा, शबनमी कतरों पे रात का नूर बरस ही जाएगा।

अनुमति से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं।
1: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
2: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
1: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
2: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।

0: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से आपको सुनवाते हैं श्रोताओं निमाड़ी लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम। और आज सौदान सिंह सोलंकी और साथियों की आवाज में कुछ पारंपरिक लोक रचनाएं।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

बांधकर अपने कंधे पर रखता और नदी से घर तक पैदल चलता। सही घड़ा पूरा पानी लेकर घर पहुंच जाता, लेकिन फूटा हुआ घड़ा रास्ते में आधा पानी गिरा देता था। अब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सही घड़ा फूटे घड़े को कहता कि तुम तो फूट चुके हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसान का समय बर्बाद कर रहे हो। फूटा घड़ा अंदर ही अंदर दुखी रहने लगा। उसे लगता था कि वह किसान के किसी काम का नहीं।

दिन बीतते गए और कुछ दिनों बाद फूटे घड़े ने किसान से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी मेहनत बेकार कर देता हूँ। मैं पूरा पानी घर तक नहीं ला पाता। आप इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर वहाँ पानी भरते रहते हैं और इतनी दूर आप चल के जाते हैं। मैं आपकी मेहनत बर्बाद कर देता हूँ और दूसरा घड़ा भी मुझे यही चिढ़ाता रहता है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। किसान मुस्कुराया और बोला कि आज तुम रास्ते को ध्यान से देखना। तब घड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर किसान मुझे रास्ते को देखने के लिए क्यों कह रहा है। अगले दिन जब किसान नदी से लौट रहा था, तब फूटे घड़े ने रास्ते के किनारे सुंदर रंग बिरंगे फूल देखे और वह हैरान था कि इतने खूबसूरत फूल वहाँ कैसे खिले हुए हैं, क्योंकि एक तरफ इतने फूल नहीं दिख रहे थे जितने कि उसके रास्ते में दिख रहे थे। तब फूटा घड़ा भी ये सोच में पड़ गया और उसे बहुत ही ज़्यादा आनंद आने लगा।

अब घर पहुंचने के बाद किसान ने उससे यानी घड़े से कहा, मुझे तुम्हारी कमी पहले दिन से पता थी, इसलिए मैंने रास्ते के उसी तरफ फूलों को के बीज बो दिए थे जहाँ से तुम्हारा पानी रिसता था। हर दिन तुम उन बीजों को पानी देते रहे और आज वही फूल इस रास्ते को खूबसूरत बनाते हैं। मैं उन फूलों को अपने घर ले जाकर सजाता हूँ और लोगों को खुशियाँ देता हूँ। तब घड़े को समझ आया कि आखिर क्यों उस किसान ने कभी इस घड़े को बदलने का प्रयास नहीं किया और इतने सालों से वह उसे खुशी खुशी अपने साथ रोज पानी भरने ले जाया करता था। किसान ने घड़े से कहा कि मैंने तुम्हारी कमी को तुम्हारी ताकत बना दिया। यह सुनकर फूटा घड़ा भावुक हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कमी ही किसी और की खुशी का कारण बन रही है।

दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो ज़रूर होती ही है, लेकिन कई बार वही कमी किसी और की ज़िंदगी में रंग भर देती है। जैसे यहाँ इस घड़े को लगा कि वो कुछ काम का नहीं है, पर जो काम वो कर सकता था वो अच्छा घड़ा भी नहीं कर सकता। इसलिए कभी खुद को कमज़ोर मत समझिए। हो सकता है कि आपकी वही कमी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर किसी की अपनी खूबी होती है और हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में माहिर होता ही है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब समय हो चला है अगले गीत का। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें बहुत ही अच्छी सीख दी। कई बार हम अपने अंदर की खूबी को नज़रअंदाज कर देते हैं और बस नकारात्मक यानी नेगेटिव साइड ही देखते हैं, लेकिन हमें हमारे नज़रिए और सोच को बदलकर अपनी खूबी पहचाननी चाहिए। तो साथियों, ये तो था हमारा आज का क्रम। क्रम के बारे में हमें ईमेल्स और पत्रों के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले जान लेते हैं आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न था कि किस गैस को लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो इसका उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो इसका उत्तर है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। तो साथियों, अब दीजिए इजाजत आपके

श्रोताओ, आपने सुना युववाणी कार्यक्रम FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार।

दिल लगाने वाले गीतों का सिलसिला हमने शुरू किया है लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ से। फिल्म इज्जत का गीत हम सुन रहे थे, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की इस जोड़ी का एक और गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, लता जी की आवाज़ में। ये मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है, फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त।

संगीतकार रवि का एक संगीतबद्ध गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म अमानत का यह गाना है, साहिल थ्यानवी के बोल, आइए सुनें।

श्रोताओं, आकाशवाणी खंडवा से विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब आपको मिलेगा फिल्म परख का गीत, लता जी की आवाज़।

कार्यक्रम में अब शैलेंद्र की रचना, संगीत SD वर्मन का, आवाज रफी और फिल्म गाइड का ये गीत है।

इस गीत के साथ ही विद्याधर मुले को आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत है। श्रोताओं नमस्कार। FM 101.2 MHz पर यह है आकाशवाणी खंडवा।

0: शाम के 7 बजे हैं। आइए दिल्ली से सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये बातचीत पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्रता का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरलम में आता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओ, ये आकाशवाणी खंडवा है।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
4: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
3: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
4: क्यों?
3: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
4: वो कैसे?
3: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
4: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
3: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
4: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
3: आप कब आ रहे हैं
4: आकाशवाणी खंडवा पर?

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: FM एंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना।
2: तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आ चांद निकला।
1: तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

जी हाँ श्रोताओं, आपने चुना है 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी खंडवा को। आपके प्यार का साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी खंडवा है। शाम के 7:10 होने को हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के विदेश दौरे पर यूएई के साथ रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ 5 अरब डॉलर के निवेश पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा

0: मैं दीपा सिंह सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के विदेश दौरे पर यूएई के साथ रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ 5 अरब डॉलर के निवेश पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, धार भोशाला को हिंदू मंदिर मानते हुए एएसआई और केंद्र सरकार को सौंपा प्रबंधन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण कार्यों का किया निरीक्षण, बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी लिया जायजा। और नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी, अगले साल से सीबीटी मोड में आयोजित करने की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे पर आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने पीएम के विमान को सुरक्षा घेरा दिया। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ 5 अरब डॉलर के निवेश पर सहमति बनी। एलपीजी आपूर्ति, पेट्रोलियम रिजर्व और गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयरिंग क्लस्टर बनाने के समझौते भी हुए। श्री मोदी ने कहा कि भारत हर हाल में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। धार की भोशाला को लेकर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोशाला को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे।
1: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला और न्यायाधीश आलोक अवस्थी की युगल पीठ ने धार भोजशाला परिसर मामले में कहा कि संरचना का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है और मुसलमान मस्जिद की वैकल्पिक भूमि के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐतिहासिक, साहित्यिक और पुरातात्विक संदर्भों से सिद्ध होता है कि यह स्थल संस्कृत शिक्षा का केंद्र था और यहां देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर भी मौजूद था। न्यायालय ने अपने इस फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भोजशाला परिसर के 98 दिनों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और उच्चतम न्यायालय के अयोध्या मामले में फैसले को भी आधार बनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1958 एक्ट के तहत इस धरोहर की संपत्ति का समग्र प्रशासन और प्रबंधन एएसआई के हाथ में ही रहेगा। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
0: उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने धार के भोशाला पर आए हाईकोर्ट के फैसले पर कहा है कि भोशाला का निर्माण महान राजा भोज ने अपने कार्यकाल में किया था और ये सर्वविदित सत्य है। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं। वहीं धार जिला प्रशासन द्वारा भी भोशाला स्मारक को लेकर आए निर्णय को देखते हुए शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एडीपी पीओ भर्ती से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई जबलपुर में एक साथ करने का फैसला किया है। इंदौर और ग्वालियर की पीठों में लंबित याचिकाएं अब जबलपुर ट्रांसफर होंगी। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती विज्ञापन में 40 साल की उम्र सीमा को चुनौती दी है। अगली सुनवाई जून के आखिरी हफ्ते में होगी। पेट्रोल और डीजल के दाम आज से 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। करीब 2 साल बाद ईंधन की कीमतों में ये बढ़ोतरी की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जब दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल 20 से 100% तक महंगा हुआ है, तब भारत ने सिर्फ 3.2 और 3.4% की मामूली बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि सरकारी तेल कंपनियों ने हफ्तों तक घाटा सहकर आम लोगों को महंगाई से बचाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य उज्जैन को लंबे समय तक फायदा पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों के बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया। 250 जवानों को डीप डाइविंग और अंडर वाटर रेस्क्यू समेत 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है।
2: हमारे कामों को करते हुए जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी, श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी सब मिलकर भावना से लगे, श्रद्धा से लगे। सरकार का मुखिया होने के नाते से इसका अभिनंदन भी करता हूँ और उज्जैन का विधायक होने से अपने आप पे हमारी अपनी कामों के प्रति गर्व और गौरव का अनुभूति होती है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन

0: इन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। मंत्री ने कहा है कि NTA में बड़े सुधार जरूरी है ताकि भविष्य में धांधली न हो। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी मेधावी छात्र शिक्षा माफिया की साजिश की वजह से अपने हक से वंचित रहे। प्रदेश में 75 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है। बंपर पैदावार को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीदी लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस सीजन में रिकॉर्ड 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में आज 2 और मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। इसके साथ ही यहां खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या 16 हो गई है। ये दोनों फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से एक हैं। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर की थी। उन्होंने खुद नामीबिया से लाए गए पहले 8 चीतों को छोड़ा था। चीता परियोजना के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि सभी चीते स्वस्थ हैं और जंगल में अच्छी तरह ढल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। अब भोपाल में होने वाली सभी बैठकें ऑनलाइन मोड में होंगी। दूर दराज से आने वाले अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन बैठकों में शामिल होंगे। इसके साथ ही विभागीय जांच और पेशियां भी अब ऑनलाइन ही होंगी। भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन में भोपाल मुद्रा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा प्रदर्शनी है। 17 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लोग दुर्लभ और प्राचीन सिक्के देख सकते हैं। उज्जैन जिले के नलखेड़ा गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनिकिता शर्मा ने 9 गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वस्थ कर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने IIT मुंबई की टीम से 5 दिन की विशेष ट्रेनिंग लेकर ये काम शुरू किया। निकिता रोज घर घर जाकर माताओं को सही स्तनपान और पोषण के बारे में समझाती थी। उनके इस काम को देखते हुए महिला और बाल विकास विभाग ने उन्हें उज्जैन जिले की पहली मास्टर ट्रेनर बनाया है। भोपाल के उधदास मेहता सेंटर में आज से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-18 हॉकी सीरीज शुरू हो गई है। ये सीरीज 20 मई तक चलेगी। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले खेले जाएंगे। दूसरी तरफ IPL में कुछ ही देर बाद लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आगामी सिंहस्थ पर्व की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गुना कलेक्टर ने प्रतिमाह आयोजित होने वाले युवा संगम कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना की समीक्षा की। शिवपुरी में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए जनसंपर्क अभियान कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी मानसून के पूर्व बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों के तहत आगरमालवा स्थित मोती सागर तालाब में SDRF और होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अशोकनगर जिले में ई टोकन से उर्वरक न देने पर 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन जारी है। अब तक 381,567 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी खंडवा।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। इस समय शाम के 7:21 होने को हैं। किसान श्रोता सुने अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों को म्हारी राम राम। आज आपका साथ छे आपकी बहन निरुपमा मिश्रा। भाई बहनों होनी वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा वाला अपना देश और विश्व में परिवार क समाज की सबसे छोटी पर सबसे शक्तिशाली इकाई मान्यो गयो। परिवार केवल रक्त संबंधित समूह नहीं है, बल्कि ये प्रेम सुरक्षा संस्कार और सहयोग की ऐसी पाठशाला छे जहाँ व्यक्ति को व्यक्तित्व गढ़ियो जाज न इनाज महत्व क विश्व स्तर पर रेखांकित करने का लेन हर साल 15 मई का अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनायो जाज। सबसे पहले ये सन 1994 में मनायो गयो थो। मैं बनूनी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने को उद्देश्य परिवार का सामना आने वाली चुनौती जैसे कि गरीबी असमानता और बदलती सामाजिक संरचना का प्रति जागरूक करनु छे। भाई बहनोणी अपना देश में पुराना समय से संयुक्त परिवार की परंपरा रहेल छे, जेमा दादा दादी माता पिता काका काकी और सब बच्चा एक छत का नीचे रहता था। न संयुक्त परिवार में संसाधन न को साझो उपयोग और बालक न को सामूहिक पालन पोषण होतो थो। हालांकि हम आज का समय की बात करा तो शहरीकरण और रोजगार की तलाश में अब एकल परिवार को चलन बढ़ी होज, जे को असर ये हुए छे कि बुजुर्ग न अकेलापन की समस्या और बालक न संस्कार न की कमी देखने में आई रही। बालक न को बुजुर्ग न का प्रति सम्मान और सेवा भाव जैसी भावना भी कम हुई गई। युवा दंपति पैसा कमाने का चक्कर में इतना व्यस्त हुएगा कि अब उनका माता पिता उनका बोझ लगने लगेगा। भाई बहनों ने आज का डिजिटल युग में परिवार कई स्तर पर संघर्ष करे रोज, जेका मसी मुख्य कारण मोबाइल फोन का कारण डिजिटल दूरी छे। हम देखी राज कि एक सोफा या कमरा में बैठी कर घर का सदस्य अपना अपना स्मार्टफोन पर इतना व्यस्त रच कि एक दूसरा से बात तक करने को समय नहीं मिलतो। यहाँ तक कि परिवार का सदस्य एक साथ भोजन करते समय भी टीवी या मोबाइल देखना या आपस में बोलचाल न का बराबर एकाम होज। भाई बहनोणी इन स्थिति में परिवार का सदस्य न भावात्मक जुड़ाव तो कम हुई जाज। एक अलावा भाई बहनोणी जीवन में आगे बढ़ना या अपनो आर्थिक स्तर बढ़ाने की दौड़ में भी माता पिता बच्चा और बुजुर्ग नख पर्याप्त समय नहीं दी पाई रहे। एक साथ साथ पीढ़ीगत जो अंतराल छे उसका कारण और नई पुरानी पीढ़ी न का बीच विचार न की भिन्नता से भी परिवार का सदस्य न का बीच बोलचाल की कमी आयल छे। भाई बहनोणी परिणाम में ये अलगाव और बिखराव को कारण भी हम स्वयं छे। हम कितनी भी तरक्की करी लेवा पर अंत में हमको शांति सुकून और पहचान अपना परिवार सीज मिलज। तो इना परिवार रूपी बगिया का हरो भरो और खुशहाल रखना के लेन घर का हर सदस्य का अपनो पूरो 100% देनु पड़ेगा। तो एक लेन दिन में कम से कम

एक बार परिवार का बीच समय बितावा, वो भी मोबाइल का बगैर। घर का बुजुर्ग ने का अनुभव भी सुना, उनका अनुभव को साझा करा, जो अच्छा अनुभव छे वो अपना जीवन में उतारा, तो ये एक तरह से उनका लेन सम्मान की बात रहेगा। घर का बालक न का आधुनिक खिलौना का बजाय जो घर का बुजुर्ग छे उनका द्वारा कहानी सुनाई जाए, कविता न सुनाई जाए, न अपनी पुरानी याद न यदि बच्चा न का साथ बांटी जाए, तो भी ये बुजुर्ग न का लेन भी अच्छो समय व्यतीत होएगा, न बच्चा भी उनका से अच्छी सीख लेगा। तो ये एक दूसरा का साथ समय बिताने को थोड़ो सा समय हमको निकालना पड़ेगा। भाई बहनों, घर में खुशी को वातावरण बनेल रहे, एक छुट्टी का दिन घर का सदस्य की इच्छा अनुसार आसपास घूमने जावा, या घर पर आज अंताक्षरी जैसा खेल या सप्ताह भर का काम की आपस में चर्चा करा, एक दूसरा से अपना विचार और सुख दुख साझा करा, न कोई सदस्य कोई समस्या होए सदस्य न तो एकजुट होकर हल करने को प्रयास करा। भाई बहनों, परिवार हमारी और हमारा समाज न देश की पहचान छे, तो किन्हीं भी परिस्थिति में एक ही छवि का धूमिल नहीं होना देवा। और इन प्रकार से हम इन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को उद्देश्य बनाए रखना में सक्षम हो पावांगा। तो भाई बहन होनी, ये तो थी अपनी थोड़ी सी बातचीत, न अभी अपनी बातचीत का भी यहाँ विराम देवा, न सुना यो निमाड़ी लोकगीत जेख गायज हेमलता उपाध्याय और साथी ना।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भाई बहन होने हम अपना कार्यक्रम का आगे बढ़ावा कैसी पहले पूछ ले मैं आज को प्रश्न। आज को हमारा प्रश्न छे, कृषि में IoT काई छे। इन प्रश्न को उत्तर बतावांगा हमेशा की तरह कार्यक्रम का आखिर में। तब तक बने रहो हमारा साथ। भाई बहन होने अपनो देश दुनिया का सबसे युवा देश में से एक छे। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा युवा छे। पण इनी ताकत को सही उपयोग तबज हुई सकज जब उनका हाथ में हुनर होए, कौशल होए। इनीच सोच का साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। मैं भी नहुनी अक्सर असो देखना मावज कि कई युवा पढ़ाई तो करी लेज पण उनका पास कोई व्यवहारिक कौशल या हुनर नहीं होतो, जेका कारण उनका नौकरी या रोजगार पाने में परेशानी को सामनो करनो पड़ज। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना छे जो युवा न क उनकी पसंद का क्षेत्र का अनुरूप मुफ्त में प्रशिक्षण देज। मैं बनूनी ये योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाज, जेको उद्देश्य युवा भाई न क आधुनिक उद्योग न की जरूरत का हिसाब से ट्रेनिंग देणु, ट्रेनिंग का बाद युवा भाई न का नौकरी दिवाण या उनको खुद को व्यवसाय शुरू करने में मदद करनु, और ट्रेनिंग पूरा होने पर शासन द्वारा प्रमाण पत्र देणु जे की उपयोगिता पूरा देश में होए। भाई बहनों ने योजना का तहत दी जाने वाली ट्रेनिंग पूरी तरह से निःशुल्क रहज, और कई मामला में तो ट्रेनिंग में सफल उम्मीदवार न का राशि भी दी जाए। भाई बहनों ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केवल कक्षात्मक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, ये कई हिस्सा में संचालित छे। जसो कि ऐसा युवा भाई जो बेरोजगार छे ने जिनने स्कूल या कॉलेज छोड़ी दियोज, तो उनका इनी योजना का अंतर्गत तकनीकी कौशल का साथ साथ सॉफ्ट कौशल, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता की ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा ऐसा भाई लोग जो कि अपना कार्य में कई साल को अनुभव राखज पर उनका पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं है, तो RPL का तहत उनका हुनर का परख्यो जाज, फिर ही उनका सरकारी सर्टिफिकेट दियो जाज, जेका कारण उनका कार्य की बाजार में मांग बढ़ी जाज। एक अलावा भाई बहनों ने कुछ ऐसा

0: क्षेत्र या इलाका होज जहाँ सामान्य ट्रेनिंग सेंटर नहीं पहुँची पाता, जसो कि जेल, सरकारी संस्थान या दूरदराज का इलाका, वहाँ विशेष प्रोजेक्ट का जरिए उनका प्रशिक्षण दियो जाए। भाई बहनों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तहत हर बड़ा क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्य उपलब्ध छे, जसो कि इलेक्ट्रॉनिक्स अरु हार्डवेयर, रिटेल अरु सेल्स, स्वास्थ्य सेवा, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर न आईटी। मैं बनुनी ने योजना से जुड़ने की प्रक्रिया भी बहुत सरल छे। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनो पंजीयन कराना, फिर अपना नजदीकी का कौशल केंद्र को चुनाव करा। अब अपना दस्तावेज जसो कि आधार कार्ड और शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र जमा कराना, फिर ट्रेनिंग का दौरान अपनो कोर्स पूरा करा। कोर्स का बाद एक परीक्षा हो जेका पास करने पर सर्टिफिकेट और मार्कशीट दी जाए, जेका द्वारा आप अपना कौशल से संबंधित नौकरी पाई सकोज या स्वयं को व्यवसाय भी शुरू करी सकोज। इन प्रकार से बड़ी आसानी से हमारा युवा भाई अपना हुनर का प्रशिक्षण का माध्यम से निखारी कर अपनी नौकरी या रोजगार की मजबूत आधारशिला रखी सकत। भाई बहनों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये करोड़ों युवा नकालेन सम्मान का साथ जीने को एक जरियो छे। ये योजना युवा भाई नकालेन एक अच्छो अवसर साबित हुई सकत। तो बस अच्छा कार्य की शुरुआत जल्दी से जल्दी करो ना, अपना हुनर का अपनी ताकत बनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अपनो कदम बढ़ाओ। भाई बहनों, ये तो थी अपनी आज की बात न आव चला जानकारी की ओर न सुना जी भेटवार्ता विषय छे जायत में नर्सरी प्रबंधन। इना विषय पर जानकारी दे राज ग्राम बड़गांव पिपलोत का प्रगतिशील कृषक श्री शुभम पटेल।
1: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, जायद में नर्सरी प्रबंधन विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है ग्राम बड़गांव पिपलोत के प्रगतिशील कृषक श्री शुभम पटेल जी को। तो शुभम पटेल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: शुभम पटेल जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप नर्सरी प्रबंधन का कार्य कब से कर रहे हैं।
2: मैं नर्सरी प्रबंधन का कार्य यानी कि नर्सरी का कार्य मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, 2020 18 मार्च को।
1: जी, आप किन किन फसलों की पौध का नर्सरी प्रबंधन करते हैं?
2: हम हमारे यहाँ पॉली हाउस में या टोट ट्रे में नर्सरी प्रबंधन करते हैं, नर्सरी करते हैं हम। इसमें जायद का बताया कि जायद में हम करीब कुकुरबिटेसी और सोलेनिसस क्रॉप दोनों का करते हैं। कुकुरबिट्स में आता है समझ लो कि कद्दू वर्गीय फसलों में गिलकी, लौकी, करेला, टिंडा, उसके बाद में तरबूज, खरबूजा, इन फसलों की नर्सरी तैयार करते हैं। और सोलेनिसस क्रॉप में यानी कि उसमें आएगा अपना मिर्च, बैगन, टमाटर और कई प्रकार के फूलों की भी नर्सरी तैयार करते हैं, जैसे गेंदा हो गया, बिजली हो गया, नौरंग हो गया, इन फसलों की हम जायद में नर्सरी तैयार करते हैं और किसान भाई भी इन फसलों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
1: जी, ये तो आपने नर्सरी प्रबंधन में किन किन फलों, फूलों और सब्जियों का हम पौध तैयार कर सकते हैं इसकी जानकारी दी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि नर्सरी प्रबंधन के लिए आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं?
2: नर्सरी प्रबंधन के लिए हमारे यहाँ तो हम पॉली हाउस में प्रो ट्रे इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए डिबलर का यूज होता है हमारे यहाँ
1: जी,
2: और सीधा हम हाथ से सोइंग करवाते हैं। एक ट्रे में करीब 126 यानी कि 126 केविटी का ट्रे होता है
1: जी,
2: उसमें हम नर्सरी तैयार करते हैं।
1: इसके बाद बात आती है कि नर्सरी प्रबंधन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं?
2: नर्सरी प्रबंधन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो संरक्षित रूप से जैसे पॉली हाउस या नेट हाउस या टनल बना के, या और दूसरा प्रकार है इसमें बेड विधि से किसान ओपन फील्ड में भी तैयार कर सकता है। उसके लिए किसान अपने खेत का कोई भी कोना जहां पर पानी की अच्छी व्यवस्था हो, यहां आसानी से पानी पहुंच जाए या पानी दे सके, और जानवरों से बचा के ये जिस स्थान पर थोड़ा सा अपनी जमीन का जो सबसे अच्छा

0: एरिया हो, सेफ हो,
1: जी
0: जहाँ पे जानवरों की समस्या नहीं।
1: जी तो ये तो आपने 2 से 3 प्रकार आपने बताए कि इन 2-3 प्रकारों से हम हमारा जो भी पौध तैयार कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि प्रो ट्रे के द्वारा, तो ये प्रो ट्रे विधि के बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताएंगे।
0: प्रो ट्रे का यूज हम केवल पॉली हाउस में या नेट हाउस में ही कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको अपने घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रो ट्रे में मीडिया के तौर पर केवल हम कोकोपीट ही यूज करते हैं। तो
1: जी
0: इसमें कई प्रकार से कभी कभी किसान को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, कभी कभी किसान इसको मैनेज नहीं कर पाता है।
1: जी
0: यदि किसान करना चाहे तो आर्थिक स्थिति या उसके बजट के अनुसार वो अपने खेत पे भी नेट लगा के फ्रोटरे में भी कर सकता है।
1: जी मतलब जैसे किसानों को सुविधा लगे उस प्रकार से वो उस प्रोट्रे के द्वारा नर्सरी प्रबंध कर सके। एक आपने जो विधि बताई है बेड के द्वारा, बेड के द्वारा हम किस प्रकार से नर्सरी में पौध तैयार कर सकते हैं, तो बेड बनाने की विधि के बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएंगे।
0: बेड बनाने के लिए हम सबसे पहले तो हम मिट्टी में ही सोइंग करेंगे या बीज की बुआई करेंगे, फिर हम यहाँ से रोप दूसरे स्थान पे ले जाके उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कि काली मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी या जो उर्वरता में सबसे अच्छी हो
1: जी
0: उसका चयन करेंगे, फिर उसे हम मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करेंगे, एक या दो जुताई करेंगे, गहरी जुताई। उसके बाद में उसे हम थोड़ा 10 से 15 दिन धूप दिलाएंगे या उसकी नमी कम करेंगे ताकि फंगल इन्फेक्शन की समस्या नहीं हो। उसके बाद में हम उसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल के फिर हमें बेड बनाना है।
1: जी
0: फिर एक बेड बनाने के लिए हम बेड मेकर या बेल द्वारा बेड भी बना सकते हैं। उसके
1: जी
0: बाद में बेड हमें केवल 1 से 1.5 फीट ऊंचाई का ही बनाना है।
1: जी तो ये बेड की आपने ऊंचाई बताई है, तो इसका कोई कारण है कि इतनी ऊंचाई क्यों रखना चाहिए?
0: सीधी सी बात है कि जायद का मौसम है, यानी कि गर्मी का मौसम है, वातावरण में तापमान ज्यादा है, तो
1: जी
0: इसके कारण हम यदि ज्यादा हाइट का बेड बनाएंगे तो हमारे यहाँ पानी हमें ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि बार बार देना पड़ेगा, और
1: जी
0: उसका मैनेजमेंट करने में समस्या होगी। इसके लिए किसान भाई थोड़ा सा 1 से 1.5 फीट ही हाइट रखे, 1.5 फीट भी बहुत ज्यादा हो गया, 1 फीट ही हाइट रखे ताकि पानी ज्यादा जल्दी सूखे नहीं, नीचे नहीं उतरे।
1: जी और पौध अच्छी तरह से अंकुरित हो।
0: हाँ, अच्छी तरीके से पौध अंकुरित हो और उसकी बढ़वार भी अच्छी।
1: जी तो ये तो आपने बेड की ऊंचाई की बात बताई, तो इसमें इसके अलावा कि इसमें पौध से पौध की दूरी का भी महत्व है, तो कितनी दूरी होना चाहिए,
0: पौध
1: गहराई
0: की
1: कितनी
0: दूरी
1: होना
0: का,
1: चाहिए?
0: गहराई का भी मैं बता दूं, गहराई यानी कि जो बीज है, हम यदि सोलिनेसस क्रॉप कर रहे हैं तो बीज बारीक होता है। हाँ, हमारे निमाड़ में या हमारे जिले में बताया जाए कि
1: जी
0: हमारे यहाँ मिर्च टमाटर और बैगन,
1: जी
0: जायद के समय में मिर्च टमाटर और बैंगन की ही खेती ज्यादा होती है या उनका ही नर्सरी ज्यादा तैयार की जाती है। तो
1: जी
0: इन इन फसलों का बीज जो है थोड़ा सा बारीक होता है, महीन होता है, तो इन्हें हमें ज्यादा गहराई पे नहीं डालना है, कम से कम इनकी गहराई हमें 10 से 20 mm लेना है डेप्थ।
1: जी तो ये तो हुई बेड बनाने की विधि और उसमें जो मुख्य बिंदुओं में जो सावधानी रखने की बात। शुभम पटेल जी, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी जो नर्सरी प्रबंधन के दौरान कभी-कभी पौधों में रोग और कीट भी लग जाते हैं, तो ऐसे कौन से रोग और कीट इसमें होते हैं और उनका निराकरण आप किस प्रकार से करते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, यदि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के कोई रोग या कीट लगते हैं तो सबसे पहले हम जैविक विधियों का प्रयोग करते हैं।
1: जी
0: जैसे हमारे यहाँ यदि रोग के रूप में फंगल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल होता है तो हम इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियनम का उपयोग करते हैं, और यदि कीट का प्रकोप होता है तो उसमें हम नीम तेल या नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, क्योंकि हमारा प्लांट नर्सरी अवस्था में बहुत नाजुक होता है। यदि
1: जी
0: हम इस पे केमिकल का ज्यादा उपयोग करेंगे तो इससे हमारे प्लांट को फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है।
1: बिल्कुल सही। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप जब भी इसमें रोग या कीटों का कोई प्रकोप होता है तो आप जैविक विधि से उसका निराकरण करते हैं। शुभम पटेल जी, जैसे कि अब हमारी पौध जो बनकर तैयार हो गई, अंकुरण भी हो गया उसमें, तो अंकुरण के कितने दिनों बाद ये खेतों में लगाने के लायक हो जाती है?

0: सभी फसलों का समय अलग अलग होता है,
1: जी
0: और सभी यदि हम रोप बेड पे तैयार कर रहे हैं तो इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पे मीडिया के तौर पे मिट्टी है और मिट्टी में प्लांट का मैनेजमेंट किसान भाई नहीं कर पाते, क्योंकि किसानों के पास में एक नहीं बहुत सारे काम होते हैं, तो वो उसके कारण मिट्टी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता लग जाता है। और यदि प्रो ट्रे में हम कर रहे हैं तो प्रो ट्रे का समय बता दूं मैं, तो मिर्ची में हमारे को 30 से 35 दिन लगते हैं, टमाटर में 25 से 27 दिन लगते हैं, उसके बाद में बैगन में 30 से 35 दिन लगते हैं, उसके बाद में हम कुकुरबिट्स में जाए प्रो ट्रे के लिए, तो कुकुरबिट्स का भी सबका अलग अलग टाइम है। जैसे सबसे पहले दिया जाए कि कद्दू, कद्दू में हमारा 10 से 12 दिन में तैयार हो जाता है,
1: जी
0: उसके बाद में हम लौकी में जाए तो लौकी भी 10 से 12 दिन में तैयार होता है, टिंडा भी 10 से 12 दिन में तैयार हो जाएगा,
1: जी
0: उसके बाद में हम तरबूज या खरबूज पे जाए तो इसका समय रहेगा 20 से 25 दिन या लास्ट 30 दिन, उससे ज्यादा नहीं हम नर्सरी में इसको रख सकते हैं।
1: जी
0: उसके बाद में इसके समय पे मौसम का बहुत प्रभाव पड़ता है, मौसम और तापमान का।
1: जी
0: यदि हमारे यहाँ मौसम साफ है या अच्छी धूप मिल रही है प्लांट को, तो जल्दी प्लांट लगाने लायक हो जाता है, कम से कम 4 से 22 दिन का अंतर आ जाता है। और अभी देखा जाए तो हमारे यहाँ तापमान का फ्लक्चुएशन चल रहा है, यानी कि फ्लक्चुएशन यानी कि उतार चढ़ाव चल रहा है।
1: जी
0: उतार चढ़ाव कैसा, जैसे दिन में देखा जाए तो टेम्परेचर ज्यादा होता है और रात का देखा जाए तो टेम्परेचर कम होता है, तो उसमें क्या हो रहा है कि नर्सरी में देखा जाए तो ज्यादा समय लग रहा है,
1: जी
0: तो मौसम पे बहुत निर्भर करता है किसी भी फसल के नर्सरी तैयार होने के लिए।
1: जी तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे किसान भाई यदि जायद में इन फसलों की खेती करना चाहते हैं तो पौध के लिए सही समय अभी का उचित है या कुछ समय बाद पौध तैयार करें?
0: किसान भाई अपने खेत में जैसी भी व्यवस्था है, सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था देखिए कि उनके पास में पानी की व्यवस्था कब से कहाँ से कब तक है, क्योंकि ये जो फसलें हैं हम जायद में बहुत अच्छी तरीके से अभी भी समय चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से इनकी रोपाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मिर्च में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद में इसमें थोड़ा सा हमारे यहाँ मैनेजमेंट की थोड़ी सी समस्या हो जाती है और किसान मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण प्लांट नहीं चलते हैं और वायरल इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा डर होता है,
1: जी
0: क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फिर फ्लावर से फ्रूट कन्वर्ट होने में भी प्लांट को बहुत ज्यादा समय लगता है और समस्याएं भी बहुत ज्यादा होती है। टमाटर और बैंगन का बहुत अच्छी तरीके से इस समय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
1: जी ये तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। शुभम पटेल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि एक सफल नर्सरी प्रबंधन के लिए आप हमारे
0: हाँ
1: किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे कि उनकी पौध का अंकुरण अच्छे से अच्छा हो और जिन भी फसलों की वो नर्सरी तैयार कर रहे हैं वो उन्हें अच्छे से प्राप्त हो, इसके लिए क्या
0: किसान
1: संग?
0: किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि यदि हम किसी भी प्लांट की नर्सरी डाल रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें किसी भी सीड का चयन या वैरायटी का चयन
1: जी
0: बहुत सावधानी से करना है और 10 लोगों को पूछ के करना है, ताकि हमारे साथ कोई ठगी ना हो, और प्लांट यदि हमने रोपाई कर ली है तो फिर उत्पादन होने के बाद में किसान भाई को पता चलता है कि यार ये नहीं, ये वैरायटी लगा देते तो बहुत अच्छी डिमांड होती, तो अपने एरिया के हिसाब से अपनी मंडी के हिसाब से किसी भी फसल की वैरायटी का चयन करें, ताकि बाद में आने वाले समय में उनको समस्या नहीं हो। और मैं अंकुरण के लिए बता दूं, अंकुरण के लिए भी कोई भी किसान भाई जैसे ओपन फील्ड में बेड पे यदि रोपाई करता है या नर्सरी करता है, तो बेड पे जब वो नर्सरी लगाने के बाद में या क्यारी में सीड डालने के बाद में ऊपर से वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, ताकि हमें जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो, और यदि हम उसी प्रकार से यदि मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे उसमें, तो मिट्टी में से जो उसका अंकुरण है वो जल्दी ऊपर नहीं आ पाता है और किसान भाई को उसका जर्मिनेशन बहुत कम मिलता है।
1: जी तो ये आपने बहुत अच्छी सावधानियां और कुछ प्रमुख बिंदु बताए नर्सरी प्रबंधन में अच्छी पौध के लिए। निश्चित है कि हमारे किसान भाई इसको जरूर समझ गए होंगे और वे इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। शुभम पटेल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने जायद में नर्सरी प्रबंधन विषय पर इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: भाई बहनों,

अभी हम सुनी रहा था जायद म नर्सरी प्रबंधन विषय पर ये भेंट वार्ता, जानकारी दे रहा था ग्राम बड़गांव पिपलोत का प्रगतिशील कृषक श्री शुभम पटेल। न अव जानी लेवाज आज का कृषि समाचार। केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किसान भाई का फायदा से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसलो लियो। कैबिनेट ने विपणन सत्र 2026-27 का लेन धान, मक्का, सोयाबीन और ज्वार समेत 14 खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी की मंजूरी दीज। शासन ने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी का बीज, कपास, तिल और नाइजर सीड का एमएसपी में कीज। सूरजमुखी का बीज में एमएसपी 622 रुपया प्रति क्विंटल, कपास की एमएसपी में 557 रुपया प्रति क्विंटल, नाइजर सीड की एमएसपी में 515 रुपया प्रति क्विंटल और तिल की एमएसपी में 500 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। केंद्र सरकार का इना फैसला से दाल और तिलहन की खेती का बढ़ावो मिलग। न सरकार को भी उद्देश्य छे कि किसान भाई नक लागत से कम 50% ज्यादा फायदो हो। तो ये था आज का कृषि समाचार। न अब जानकारी मौसम और मंडी भाव की। सबसे पहला खंडवा अनाज मंडी से प्राप्त उपज न का भाव की जानकारी इना प्रकार से छे। सोयाबीन न्यूनतम भाव रहो 5000 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहा 8000 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव रहो 2170 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहा 2469 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव रहो 5300 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहा 5556 रुपया प्रति क्विंटल। डालर चना को न्यूनतम भाव रहो 6000 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहा 7700 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव रहो 1600 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहा 1940 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव रहो 4400 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहा 6881 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों को न्यूनतम अधिकतम भाव रहो 6021 रुपया प्रति क्विंटल। न मूंग को न्यूनतम भाव रहो 5000 रुपये प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहा 7500 रुपया प्रति क्विंटल। ये थी खंडवा अनाज मंडी से प्राप्त उपज न का भाव की जानकारी। न अब जानकारी मौसम की। आज सूर्योदय सुबह 5:45 पहुँचो न सूर्यास्त शाम 6:55 पहुँचो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। मौसम की जानकारी के बाद भाई बहनोनी सुनी लेवा जे करू निमाड़ी लोकगीत जेख गाज साधना उपाध्याय अरु साथी ननो।

भाई बहनमणी अभी हमने आनंद लियो साधना उपाध्याय और साथी ने को गायो इनानी माड़ी लोकगीत को न भाई बहनमणी अब वारी छे कार्यक्रम का दौरान पूछा गया प्रश्नों को उत्तर बतावना की न आज को हमारो प्रश्न थो कि कृषि में IoT काई छे न एक उत्तर छे कि IoT एक स्मार्ट कृषि समाधान छे जेको उपयोग सेंसर का माध्यम से फसल की निगरानी करना और सिंचाई प्रणाली का संचालित करने का लेन कियो जाज। तो भाई बहनोनी इना प्रश्न का उत्तर का साथ ज हमारो आज को खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहाँ पूरा होज। आज्ञा देव आपकी बहन निरुपमा मिश्रा ख राम राम।

यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में सुनिए राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: ले, नाक बंद करके एकदम पी जा। अरे दवा तो कड़वी हो गई है, तू क्या जाने तेरी बीमारी से हम कितने परेशान हैं।
1: हाँ माँ।
0: ले बेटा सड़ाक से पी जा। अरे शाबाश, पी जा पी जा।
1: ओहो माँ, तुम लोग मुझे घर में रहने दोगे भी या नहीं? मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि मुझे ना कभी बुखार था, ना है और ना ही कभी भविष्य में होगा, फिर भी पता नहीं क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो।
0: सो तो मैं भी कहूँ बेटा कि बुखार हो तेरे दुश्मनों को।
1: हाँ।
0: पर तू ये काढ़ा तो पी ले मेरे बच्चे, देखियो एक ही खुराक में बुखार आधा रह जाएगा। अरे हर शरण वैद्य जी से दवा लाए हूँ तेरे लिए, कोई अरे गहरे नत्थू खरे की दवा थोड़ी। ले बेटा पी जा।
1: अब चाहे इस दवा को स्वर्गीय धनवंतरी जी ने खुद ही तैयार क्यों ना किया हो, माँ मैं इसे नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। इतनी कड़वी जहर दवा को भला कोई शरीफ आदमी पी सकता है? तुम जरा चक्कर देखो एक बूंद, जिस्म का एक एक रोआ खड़ा ना हो जाए तो मेरा नाम अशोक नहीं।
0: हाय हाय, बिल्कुल वकीलों की तरह बहस करे तू तो। भगवान मेरे बच्चे को 100 बरस की उम्र देवे, कलेक्टर बनाए इसे। ले बेटा अब तो पी ले इसे, है ही कितना, अरे मुश्किल से मासा दो मासा होगा।
1: तुम भी कमाल करती हो माँ, पूरे पाव भर का ग्लास भरा हुआ इस काढ़े से, और तुम, और फिर चाहे ये रत्ती भर ही क्यों ना हो, मेरे बस का नहीं है इसे पीना।
0: अरे मेरी नहीं तो अपने बाबूजी की परेशानी का तो ख्याल कर। अरे देखियो 3 दिन से डॉक्टर बैदों के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं, तू भी तो बिस्तर पर लेटे लेटे परेशान।
1: क्या कहा? मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ? अरे भाई मुझे लेटाया गया है बिस्तर पर जबरदस्ती। हे भगवान, कैसी बुरी घड़ी में मैंने थर्मामीटर मुंह में लगवाया था।
2: इसने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया है। अशोक की माँ, बाई दीवे मैं कहता हूँ तुम रोगी से बहस करती क्यों?
1: बाबूजी आप माँ से कुछ भी कहिए लेकिन मुझे रोगी ना कहिए।
2: वाह बरखुरदार वाह, तुम भी अपनी कसम के एक ही हो, 72 घंटों से चारपाई पकड़ी हुई है और
1: मैं इस वक्त सैकड़ों दंड पेल सकता हूँ, 1000 उठक बैठक लगा सकता हूँ, जिम्नास्टिक कर सकता हूँ, 1 मील तक दौड़ सकता हूँ और एक सड़मुसड़ से कुश्ती लड़कर उसे पछाड़ भी सकता हूँ,
2: लेकिन 3 दिन हो गए एक प्याला काला भी ना पी सके।
0: हाय हाय, वो बेचारा अभी अभी पीने ही लगा था कि तुमने उसे फिर छेड़ दिया। ले अशोक नाक बंद कर बेटे।
1: मैं कहता हूँ इस काले को पीने से मेरी सांस ही बंद हो जाएगी। बाबूजी आखिर आप लोग मेरे माँ बाप होकर भी क्यों नहीं समझते?
2: देखो अशोक, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। भाई दीदी तुम ये समझने की कोशिश करो कि अपने इकलौते बच्चे को बीमार देखकर माँ बाप के दिल पर क्या
1: बीतती।
2: भाई दीदी हम मानते हैं कि दवा कड़वी है, लेकिन कोई भी दवा इतनी कड़वी नहीं होती जो पी ना जाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो अचानक ही हमारी कनपट्टी पर भाई दीदी फुंसी पैदा हो गई।
0: और बेटा तेरे बाबूजी ने फुंसी की कोई चिंता न करके 1 महीने तक रोज नीम के पत्तों का आधा से रस पिया था, जिससे खून में कोई विकार न रहे
1: जी।
2: और बेटे हमारे इस काम से हमारी सेहत सुधर गई, साथ ही साथ घर वाले भी बड़े खुश हो गए थे। भाई देव अशोक तुम ये मत समझना कि हम तुम्हें कोई उपदेश दे रहे हैं।
1: नहीं, नहीं, कहा
2: दे भाई, तुम तो हमारे समझदार बेटे हो। अशोक की माँ
0: जी,
2: ये गिलास तुम अशोक के हाथ में दे दो।
0: अच्छा।
2: वो खुद पिएगा काढ़ा भाई। हाँ तो बेटा देखो हम आंखें बंद कर लेते हैं और तुम पी जाओ, हम 1, 2, 3 कहते हैं, 1, 2, 3 पी जाओ बेटा पी जाओ। हाँ हाँ एक सांस में पी जाओ। हाँ मैं कहता हूँ पी जाओ।
0: हाय हाय तुम तो बुरी तरह डांटने लगे बच्चे को।
1: देखो
0: जाओ पहले चेहरे का पसीना तो सुखाओ।
2: मैं कहता हूँ अशोक की माँ,
0: कहते हो तो कहते रहो, 3 दिन से बराबर बुखार है उसे, कमजोरी बढ़ गई है, आखिर एक सांस में कैसे पी जाएगा इतना सारा काढ़ा। ले बेटे बेटे अशोक।
1: माँ मैं एक सांस में 2 सेर दूध पी सकता हूँ, 5 कच्चे अमरूद खा सकता हूँ, 2 दर्जन केले खा सकता हूँ, यहाँ तक कि कड़वे करेले खा सकता हूँ, पर
2: एक प्याला काढ़ा नहीं पी सकते।
1: बाबूजी ये नीम के पत्तों से कहीं ज्यादा कड़वा है।
2: कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें काढ़ा पिलाकर ही दम लेंगे।
1: भगवान
0: बेटा ये काढ़ा मैं 15 दिन तक पी चुकी हूँ। अरे मुझे भी तेरी तरह 100 बुखार था,
2: ना कमबख्त बढ़ने का नाम लेता था ना घटने का। 5 दिन बाद तुम्हारी माँ को जब ये काढ़ा दिया गया तो
0: कहीं जाके मेरा बुखार उतरा। हाय वैद्य जी, भगवान उन्हें 100 बरस की उम्र,
2: क्या भक्ति होगी। वैद्य जी पहले 102 साल के हैं। अच्छा तो हाँ अशोक की माँ, हम अशोक के दोनों हाथ पकड़े लेते हैं
0: जी।
2: तुम बिजली की तेजी से अशोक के मुंह में काला डाल देना।
0: नहीं जी, हाथ मैं पकड़ती हूँ।
2: तुम्हारा बेटा 25 साल का नौजवान है अशोक की माँ, एक झटके में ये दोनों हाथ छुड़ा लेगा।
1: आप लोग चिंता ना करें, मैं चुपचाप लेटा रहूंगा
2: और फिर तुम घंटों तक मुंह नहीं खोलोगे।
1: बाबूजी आप मुझे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखला देते, ना हो तो वैद्य

0: किसी से कहिए वो आकर मुझे देख तो ले। पता नहीं उन्होंने मेरी नब्ज देखे बगैर कैसे काड़ा दे दिया।
1: बेटे तुम्हारी जिद को देखते हुए भाई दिवे मैंने डॉक्टर साहब को बुला भेजा
0: जी।
1: बस वो आते ही होंगे 5-7 मिनट में, लेकिन उनके आने से पहले हम तुम्हें इस शख्सीर दवा की एक खुराक जरूर पिलाना चाहते हैं।
0: नहीं
1: हाँ अशोक की माँ
2: जी।
1: अच्छा तो देखो हम अशोक के दोनों हाथ पकड़ते हैं और तुम
2: चलो मैं दवा उड़े लूंगी।
0: प्रभु
2: जरा एक सेकंड के लिए ये गिलास तो पकड़ना अशोक के बाबू।
1: लाओ दे दो। है मुझे तो तुम्हारा हाथ भी कुछ गर्म महसूस हो रहा है, कहीं तुम्हें तो
2: क्या भगते हो जी।
0: बहुत अच्छे।
2: अरे अभी अभी तो मैं कढ़ी चावल खा के उठी हूँ और सुबह से अब तक कसाले का काम करती रही हूँ। मुझे भला कहीं बुखार हो सकता है?
1: अरे बातों का बुखार से क्या ताल्लुक है, तुम फौरन थर्मामीटर लगाओ।
2: कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं सठिया गया है अशोक के बापू। अरे मुझे फिर भूख लग रही है और बल्कि मुझे तो अभी रामू की माँ के घर भी जाना है।
0: फिर भी थर्मामीटर लगाने में क्या हर्ज है माँ, हम बुखार ना हो तो ना सही, बाबूजी की शंका तो दूर हो जाएगी। ये लो थर्मामीटर।
2: ओफो
1: देखो बेटे तुमने जरा अपनी माँ की तबीयत खराब होने की बात सुनी तो तुम्हें भी टेंशन हो गई, यानी तुम्हारी भी चिंता बढ़ गई।
0: चिंता की तो बात है ही बाबूजी।
1: यही हाल हमारा भी है अशोक बेटा, तुम्हारे लिए हमें बहुत टेंशन है, हम बहुत चिंतित हैं।
0: आप ठीक कहते हैं बाबूजी, मैं गलत था।
1: अच्छा तो बच्चे अब तुम चुपचाप काढ़ा पी लो।
0: पी तो लूंगा बाबूजी, पर आपको एक कष्ट दूंगा।
1: हाँ हाँ बेटे जरूर कहो कहो।
0: बाबूजी मैं सीधा लेटा रहूंगा और किसी ना किसी तरह मुंह भी खोल लूंगा, बस आप एकदम खुराक मेरे गले में पहुंचा दीजिए।
1: शाबाश बेटा शाबाश। एक सेकंड ठहरो।
0: क्यों?
1: मैं जरा थर्मामीटर देख लूंगा।
0: हाँ जी
1: लाना जी, जरा देना इधर थर्मामीटर।
2: ये लो।
1: देखा। मैं पहले ना कहता था अशोक की माँ तुम्हें भी बुखार है, 100 डिग्री ठीक अशोक की तरह।
0: वो क्या मालूम बाबूजी माँ को भी 2-3 दिन से बुखार रहा हो।
1: हो सकता है,
0: हो सकता है।
2: मैं कहती हूँ
1: तुम्हें अब कुछ कहने सुनने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें लेटने की जरूरत है।
0: हाँ माँ।
1: संतो ओ संतो, अबे संतो कहाँ मर गया तू? क्यों जी कहाँ चले गए थे तुम?
3: डाकघर गया था बाबूजी, अशोक बाबू ने 3 पोस्टकार्ड और 5।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, तुम इस चारपाई पर एक बिछौना अशोक की माताजी के लिए लगा दो, जल्दी बुखार है और ये थर्मामीटर धो ला।
2: क्या मुसीबत है।
0: बाबूजी अब इस काढ़े की 2 खुराक बना लीजिए, एक खुराक माँ को भी तो चाहिए।
1: तुम ठीक कहते हो बेटा, बिल्कुल ठीक कहते हो। बाय द वे ये लो अशोक की माँ, लो पहले तुम पी जाओ दवा,
0: जल्दी
1: तुम्हें देखकर अशोक की हिम्मत भी खुल जाएगी।
2: अरे मैं नहीं पीऊंगी ये कड़वा काढ़ा, मेरा जी पहले से ही मितला रहा है।
1: वाह जी वाह, ये कैसे हो सकता है।
3: बिस्तर तैयार है बाबूजी, और ये लीजिए थर्मामीटर।
1: अशोक की माँ तुम तो पहले भी इस काढ़े को 15 दिन पी चुकी हो।
0: हाँ तुम
1: लो पी लो, उधर तुम्हारा बुखार उतरा, इधर मेरी और अशोक की टेंशन यानी चिंता एकदम दूर हो जाए।
2: अजी नाली में फेंकिए इस काढ़े को, भाग में बुखार होगा तो होके ही रहेगा, वैजी का काढ़ा तकदीर के लिखे को थोड़ा ही बदल सकता है।
1: देखो अशोक की माँ अब तुम्हें भी जबरदस्ती पिलाया जाएगा काढ़ा, दवा के मामले में मरीज की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
0: गुस्सा ना कीजिए बाबूजी, लाइए पहले मुझे पिला दीजिए दवा, माँ अपने आप पी लेंगी बाद में।
1: जियो बेटा जुग जुग जियो। अच्छा तो तुम सीधे लेट जाओ, मैं तुम्हारा मुंह खोलकर अपने आप दवा डालता हूँ।
0: जी
1: हाँ इस तरह बस बस, अब हिलो डुलो मत।
0: जी
1: हाँ हाँ हाँ, मुंह खोलो खोलो मुंह खोलो।
0: ठहरी बाबूजी।
1: क्या बात है बेटे?
0: बाबूजी मुझे आपका हाथ भी गर्म लगता है, कहीं आपको तो।
1: अरे पगले धूप में चल फिर कर आया हूँ ना, कोई बर्फ खाने में तो बैठा नहीं था, और फिर मेरे चेहरे की सुर्खी क्यों नहीं देखते हो तुम?
2: सुर्खी बुखार से भी बढ़ जाती है कभी कभी अशोक के बाबू, थर्मामीटर तो पास में पड़ा है, लगा के क्यों नहीं देख लेते?
0: ये लीजिए बाबूजी थर्मामीटर, भगवान करे आपको बुखार हो।
2: बेटा अशोक बैजी मुझे बता रहे थे कि आजकल भूत के बुखार बहुत फैल रहे हैं।
0: माँ भूत नहीं बैजी, छूत की बीमारियों का जिक्र कर रहे होंगे।
2: बुखार भी तो बीमारी ही होती है बेटा।
0: तब तो ये काढ़ा पीना ही होगा माँ तुम्हें।
2: अरे मेरी जिंदगी का क्या है बेटा, जिंदगी तो तुम लोगों की चाहिए।
0: लाइए बाबूजी मुझे दीजिए थर्मामीटर। अरे आपको भी बुखार है 100 डिग्री मेरी और माँ की तरह।
2: सच? संतो
0: संतो
2: संतो, अरे इस पलंग पर एक बिस्तर और बिछा दे,
0: एक और,
2: और एक खाली प्याला भी लेते आना
0: जल्दी।
3: जी अशोक।
2: हाँ अशोक।
0: हाँ जी माँ।
2: आप इस दवा के 3 हिस्से कर दे।
0: जी अभी कर।

0: एक खुराक तेरे बाबूजी देंगे।
1: भाई आज मेरे बुखार का पहला दिन है, आज मेरा दवा पीना ठीक नहीं।
2: कौन जाने बाबूजी, आपको भी मेरी और माँ की तरह कल परसों से बुखार हो।
3: बिस्तर लगा दिया है बीबी जी।
0: अच्छा,
3: अरे ये लीजिए प्याली।
0: अशोक बेटा, सबसे पहले अपने बाबूजी को एक खुराक दे।
2: सबसे पहले,
0: अरे इनके ही दम से तो गृहस्थी चलती है हमारी।
1: मैं आज बुखार के पहले दिन दवा नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, ये मेरा उसूल है।
0: लेकिन नीम के पत्तों का रस तो तुमने उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन तुम्हारी कनपट्टी पर फूसी।
1: ठीक है, लेकिन ये काढ़ा है।
4: नमस्कार कृपा शंकर जी।
1: आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आपकी सख्त जरूरत थी। देखिए, मुझे और अशोक की माँ को भी सौ बुखार हो गया।

0: दूंगा, ये मेरा उसूल है।
1: लेकिन नीम के पत्तों का रस तो तुमने उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन तुम्हारी कनपटी पर फूसी।
0: ठीक है, लेकिन ये काढ़ा है।
2: नमस्कार कृपा शंकर जी।
0: आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आपकी सख्त जरूरत थी। देखिए, मुझे और अशोक की माँ को भी सौ बुखार हो गया है, और अशोक के बारे में तो मैंने आपको टेलीफोन पर बता ही दिया था।
3: लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे भूख बहुत लगती है, दौड़ने भागने को जी करता है, और बिस्तर सबसे बुरा लगता है।
2: लाइए, नब्ज दिखाइए।
1: डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ी देर पहले कढ़ी चावल खाए थे, अब फिर भूख लग रही है, बदन में फुर्ती महसूस कर रही हूँ।
2: आप भी नब्ज दिखाइए।
0: मैं बिल्कुल चंगा हूँ डॉक्टर साहब, देखिए फिर भी मुझे सौ बुखार है।
2: आप भी लाइए अपनी नब्ज।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, आप खामोश हैं।
2: कोई खास बात नहीं कृपा शंकर जी, मैं सोच रहा हूं मैं यहां बेकार ही आया, आपका थर्मामीटर गलत है। जी हाँ, इसको लाख बार झटकिए लेकिन इसका पारा ना तो 100 डिग्री से आगे बढ़ता है और ना ही पीछे हटता है।

बुखार। अभी आपने वीरेंद्र कश्यप की लिखी हास्य नाटिका सुनी। निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
5: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम चित्रलोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म बर्फी से ये गीत रेखा भारद्वाज की आवाज में प्रीतम ने संगीत दिया, सईद कादरी ने इसे लिखा।

राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत आजा नचले फिल्म का नाम है। जयदीप साहनी ने इसे लिखा और सलीम सुलेमान का संगीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

से आपका स्वागत है। फिल्म ब्रदर्स से ये गीत, सोनू निगम, नीति मोहन की आवाजें। अजय अतुल का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं चित्रलोक विविध भारती से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन के फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित

0: सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों

0: में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
2: अंडर द थ्री पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूल जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इन

0: इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर-17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर-15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं।
4: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
5: जरा मैं भी सुनू।
4: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी?
5: तुमसे नहीं।
4: मैंने देखा है कि फूलों

0: लता मंगेशकर मनाडे की आवाजों में ये गीत चोरी चोरी फिल्म से आपने सुना, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

फैंस की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं, आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय क्षमता है।

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अभी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई।

0: गई गई सज से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक।
1: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपहले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले।

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: इसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, चूं चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आईं। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हों।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। यह उस रात की बात है जब शोक हवा एक खूबसूरत फूल के पास ठिठक गई। अब हवा के मन की लहर का क्या कहें, कुछ देर ठहरी

इतलाती बलखाती हवा चलते चलते एक जर्रे के पास आई, जो खुद में सिमटा न जाने किन ख्यालों में गुम था। हवा ने उसे शरारत से देखा और अपने एक झोंके की गांठ खोल दी। फिर क्या था, फूल की खुशबू ने जर्रे को चारों ओर से घेर लिया।

क्या बताएं, वो हवा की छेड़छाड़ थी या खुशबू का असर। खोया खोया वो जर्रा अचानक बेचैन हो गया और पूछने लगा।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत के सुरीले सफर में कुछ और नगमे होंगे इस अंतराल के बाद।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। कुछ एहसास इतने खास होते हैं कि साथ ना होकर भी हमेशा पास रहते हैं। खुशबू के उस झोंके से जरा तो महक गया, जो कहना चाहता था वो हवा से कहलाया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा।

संदेश मिला जर्रे का, उसका रंग कुछ और निखर गया, मगर चाहकर भी न मिल पाने की बंदिश थी सामने। फूल को बेहद मायूसी हुई, मुरझाने का वक्त करीब था। फूल ने अपनी तमाम खुशबू हवा को सौंपी और जर्रे को संदेश भिजवा दिया।

जर्रा झूम उठा जब जानी पहचानी प्यारी सी खुशबू ने उसे एक बार फिर घेर लिया। मगर जब हवा ने फूल का पैगाम सुनाया तो एक आग सी उठी जर्रे के सीने में। अपनी बेकसी पर वो तड़प उठा, काश वो भी फूल के इर्द गिर्द होता, कुछ पल तो साथ होते, वो कितना अच्छा होता अगर यूं होता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the 6-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the